हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का।

0: ये आकाशवाणी सागर है। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मूचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ललित मोहन की ये रचना। संगीत निर्देशन भी डॉक्टर ललित मोहन का था। मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं गणेश वंदना चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर।

गणेश वंदना के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं शिव भजन। शर्मा बंधुओं के स्वर हैं और ये रचना है पंडित रामानंद शर्मा की।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, से बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे 6:40 से। हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह सुनेगा 7 बजे और कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत होता है 7:05 से। आप ही के फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत, समय सुबह 7:20। 7:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी संगीत। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत सुनेगा सुबह 8:15 से। और महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम बिंदिया हम लेकर आएंगे 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनवाएंगे एक परिचर्चा, विषय होगा विश्व जूनोसिस दिवस। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे इस परिचर्चा में डॉक्टर नीलेश शाह और डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, डॉक्टर सुमित रावत। इस कार्यक्रम के प्रायोजित कर्ता होंगे GIZ नई दिल्ली। परिचर्चा का समय पुनः सुन लीजिए सुबह 9 बजे, विषय होगा विश्व जूनोसिस दिवस। 9:30 से चित्रपट संगीत कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे। 9:50 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। 10:05 से आप सुनेंगे फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से ही। और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपको सुनवाती हैं 11 बजे। और 11:30 से रिले किए जाएंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत, शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं। शाम 5:30 पर स्टूडियो लौटेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 6 बजे पुनः सुन पाएंगे आप विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। और 6:30 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे सदाबहार गीत। आज शाम की सभा में लोक रंग कार्यक्रम का प्रसारण इस प्रकार होगा 6:45 पर और 7:20 पर। और 7:30 पर हम रिले करेंगे ग्राम सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 8 बजे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम संगीत सरिता का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:20 पर। और मन चाहे गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 9 बजे। 9:30 से विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। और अब सुन लीजिए समाचारों का विवरण। संस्कृत में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से सुबह 6:55 पर। प्रादेशिक समाचार होते हैं सुबह और शाम 7:10 पर और दोपहर 2:10 से। इन्हें हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करती हैं। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाता है।

कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान

लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर्था अनुराधा पौड़वाल का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं भोले मिश्र गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र की शब्द रचना लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को स्वरबद्ध किया है सलिल चौधरी ने और फिल्म का नाम परख।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं काला बाजार फिल्म से ये गीत। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के स्वर हैं, शब्दकार हैं शैलेंद्र, और इस गीत को संगीत से सवारा एस टी वर्मन ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत लता मंगेशकर के स्वर में। बरसात फिल्म से ये गीत हमने लिया। शब्दकार हैं हजरत जयपुरी।

0: श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:55 होने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। सन्धेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परम् असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्तानगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीयप्रवासीसमुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीयगृह एवं सहकारितामन्त्री अमितशाहः अद्य

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7 बजे हैं। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। बहती हुई नदियों ने कभी मुझे अशांत नहीं किया, पहाड़ों ने मुझे कभी कठोर नहीं बनाया, पतझड़ के बाद खाली पड़े हुए वृक्षों ने कभी मुझे सूखने नहीं दिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। शुद्ध प्रकृति की हर चीज़, हर घटना हमें यही सिखाती है कि टूटना किसी भी चीज़ का अंत नहीं, और हमारे जीवन में भी कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं जो इस वक्त के लिए, जो श्रोताओं इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि हारने के बाद ख़त्म कर देना चाहिए इंसान को अपना संघर्ष। कहते हैं टूटना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब बादल अपना स्वरूप खोकर यानी टूट कर बरसते हैं तभी प्यासी धरती को जीवन मिलता है। जब खेतों में हल चलता है और मिट्टी टूटती है तभी वह उपजाऊ बनती है। उसी तरह एक नन्हा बीज जब

अपनी बाहरी परत को तोड़ता है तभी उसके अंदर से एक विशाल फलदायी वृक्ष जन्म लेता है। श्रोताओ, हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हम भीतर से पूरी तरह टूट जाते हैं। रिश्तों का बिछड़ना, विश्वास का टूटना, असफलताएं या परिस्थितियों का बोझ हमें ऐसा महसूस कराता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन सच तो ये है कि हर टूटन अपने साथ एक नई शुरुआत की का अवसर भी लेकर आती है। टूटना कोई कमजोरी नहीं है श्रोताओ, कमजोरी तो तब है जब हम टूटकर वहीं रुक जाएं। जो व्यक्ति आंसुओं को शक्ति, अनुभवों को सीख और अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बना लेता है वही जीवन का आनंद ले पाता है और विजेता कहलाता है। जिस तरह श्रोताओं हर नया सवेरा यह संदेश देता है कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह जीवन में आई मुश्किलें हमें और भी परिपक्व और अधिक सजग बना देती हैं। श्रोताओं, जीवन की विपरीत परिस्थितियां हमारी वास्तविक पहचान को नहीं बदल सकती, वे केवल हमें यह सिखाने आती हैं कि हमारी शक्ति बाहर नहीं भीतर है। श्रोताओं, जिस दिन से हम अपने दर्द को स्वीकार कर उससे सीख लेते हैं उसी दिन से हमारी नई यात्रा शुरू हो जाती है। जो हुआ वह बीत चुका है, अब इस क्षण में हम कौन सा विचार चुनते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं टूट चुका हूँ, तो वास्तव में टूटना हमारा मन है। उस समय टूटता हमारा मन है, हमारी अपेक्षाएं और हमारी धारणाएं और वो चित्र जो हमने जीवन के बारे में बना रखे हैं। इसीलिए शांत मन से जीवन की हर परिस्थिति की वास्तविकता को पहचान कर स्वीकार कीजिए और अंत में श्रोताओं इन्हीं इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए कार्यक्रम सुबह सुबह को संपन्न करने की अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह, ये आकाशवाणी सागर है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:05 हुए हैं। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। इस विषय पर सुनते हैं कृषि संकेत।
2: अपना भारत है कृषि प्रधान देश है, और जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे ही आधारित है। बिना खेती के भारत अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो किसी क्षेत्र में जो है अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि
3: जी,
2: जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, किसान भाइयों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में पहुंचते हैं, जिसके द्वारा किसान भाइयों को कुछ आर्थिक मदद मिलती है। इसके बाद लगातार जो चल रही है फसल बीमा योजना, ये फसल के लिए मुख्य आधार है। यदि किसान भाई अपना फसल

0: बीमा करवा लेते हैं तो इसके द्वारा भी एक सुरक्षा की गारंटी किसान भाइयों को मिलती है। इसके बाद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसान भाइयों को MSP के द्वारा मिलता है, उसके लिए सरकार प्रयास करती है। इसके बाद बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि पहले जो किसान भाई के पास पूंजी नहीं रहती थी तो वो व्यापारी या आढ़तिया साहूकारों से लेते थे, जिससे
1: जी
0: बहुत ज्यादा महंगे रेटों में उनके लिए ऋण प्राप्त होता था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम रेट पे उनको पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नई तकनीक एवं नवाचार की बात करें तो PM कुसुम योजना है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है।
1: जी
0: साथ ही साथ आप देखें कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का या और भी उर्वरकों का प्रयोग होता है, तो पहले किसान भाई छोटे पंपों से करते थे, लेकिन अब जो नमो ड्रोन दीदी योजना निकली है, आप देखेंगे कि ड्रोन के द्वारा आप उर्वरकों का और अन्य पेस्टिसाइड खरपतवार नाशक के लिए जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में ड्रोन के द्वारा छिड़काव होने लगा है, कम समय में। और बहुत अधिक क्षेत्र में आप देखेंगे व्यापक रूप से एक समान रूप से ड्रोन के द्वारा आप छिड़काव हो रहा है। और साथ में देखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कौन सा पोषक तत्व कितना है, ये जानकारी मिल जाती है। और अब एक और नाम जुड़ गया है, ई-नाम। इसमें जो मंडियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक व्यापारी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे किसी मैपर में लगातार जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, कहाँ कितने प्रदर्शन दिए गए हैं, किस किसान को दिया है, वो प्रदर्शन लगाया गया है, तो उसमें शुरुआत बुवाई से लेके कटाई तक उसकी जो ग्रोथ है वो डिजिटल रूप से सैटेलाइट द्वारा ली जाती है, और उसका पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड भविष्य के लिए संधारित होता है कि जो प्रदर्शन लगाए गए थे तो उसका क्या परिणाम है।
1: जी
0: ये नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लगातार 12 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं।
2: कृषि संकेत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे हमारे आज के विशेषज्ञ विपिन जैन। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद हो चुकी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यो का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि ये प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: खंडवा जिले के झावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह सावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं, जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
5: मैं अश्विन सावले, ग्राम झावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
4: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
6: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6,000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना, वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मॉनसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल होंगे कुछ पत्र और कुछ व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहले ये पत्र हमें मिला लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने से एनआर श्रीपात्री, केशर, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और समस्त श्रीपात्री परिवार सागर से। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ये संदेश व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर गुजरात गांधीग्राम से, प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी और गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं मेरा साया फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

पंजाब से परम सिंह जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजवी, राधिका बीबी, अनिष्का और तन्मय गजवी, अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले, आप सभी श्रोताओं ने हमें जगह का नाम नहीं लिखा, तो चलिए श्रोताओं आपकी फरमाइश तो पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आपको पहली फिल्म से ये गीत, और इस गीत को आवाज़ दी हेमलता और सुरेश वाडकर ने।

0: श्रोताओं, मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आएंगे इस संदेश के बाद।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ,

0: हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
1: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: मंच आय गीत कार्यक्रम में फिर स्वागत आपका। आइए सुनवाते हैं आप सभी का अनुरोध। ये व्हाट्सएप संदेश हमें लिख भेजे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता निम्पल बाबू, प्रियांश और भाव्या देवांगन। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, फरदीन, सरफराज, सुहान, अरजान अवान और समस्त अब्बासी परिवार वालों ने। एक पत्र भी हमें प्राप्त हुआ इसी गीत को सुनने के लिए। आप सभी हैं बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनुरथ रैकवार, हल्ली, लल्लू, ऋषि रैकवार और उनके बहुत सारे मित्रगण। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं आशा भोंसले के स्वर में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, फिलहाल सावन को आने में तो समय है, लेकिन मानसून के आने से मौसम सुहाने हो गए। चलिए अगली फरमाइश पूरी करते हैं श्रोताओं की। जुदाई फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत है, और फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ से जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाते हैं आपको जुदाई फिल्म से ये गीत।

ये श्रोताओं, अगली फरमाइश शामिल करते हैं इनकी। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा। गोल्डन रेडियो श्रोता संगराज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, स्वर्णकार पिंकी, स्वर्णकार आर्यन, कृष्णा और पीहू। एक और संदेश, नहीं श्रोता, दो संदेश हमें और मिले हैं इसी गीत के लिए। जवाहरनगर दुर्ग के ये श्रोता हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। पलारी छत्तीसगढ़ नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा, ईशांत देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है प्रेम बंधन फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मंच आइए संपन्न करने की चंचल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नसीम अजमेरी का ये गुलाम पंकज उदास के स्वर में।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलें। आइए आपको सुनवाते हैं निदा फाजली की ये गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

चित्रा सिंह के स्वर में प्रेम बरबटोनी का ये कलाम आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 8 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर

0: को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
1: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रज

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मालती सेन और सखियों से ये गणेश वंदना।

0: मालती सेन और सखियों से ये गणेश भजन आप सुन रहे थे। अगला लोकगीत सुनने से पहले सुनेंगे ये संदेश।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं दीपचंद आठिया से ये लोकगीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं बद्री प्रसाद परदेसी से ये विवाह गारी।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए मालती सेन, दीपचंद आठिया, बद्री प्रसाद परदेसी और उनके संगी साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम बिंदिया।

सखियों नमस्कार। बिंदिया कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी सखियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम बिंदिया में। सखियों, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, सभी बच्चों ने समय पर जाना शुरू कर दिया है। दिनचर्या हम सभी की एक बार फिर से पहले की तरह वापस हो गई है। सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना, लंच बॉक्स, टिफ़िन, ये सब तैयार करना, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद एक कप सुकून से चाय पीना, है ना? बिल्कुल सही बात है सखियों। सुबह की भागम भाग में आराम से बैठना, बातें करना कहाँ संभव हो पाता है। ये तो बस सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद ही होता है। तो भाई, आप अपने काम जारी रखिए और सुनती रहिए अपना ये विशेष कार्यक्रम, जो हम सिर्फ आप जैसी प्यारी सखियों को ध्यान में रखकर ही सजाकर लेकर आ जाते हैं, है ना सखियों? चलिए, तो आप तो जानती ही हैं कि बारिश का मौसम शुरू होते ही पेड़ पौधे लगाने की या वृक्षारोपण करने की बात कही जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जुलाई माह के पहले सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है सखियों, जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है। तो ये तो हुई सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की बात, इसमें हम कैसे भागीदार बन सकते हैं इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये बात यहाँ भी लागू होती है सखियों कि छोटे छोटे स्तर पर जब किसी मुहिम में हम शामिल होते हैं सब मिलकर, तो निश्चित ही सफलता हासिल की जा सकती है, है ना? अपने अपने स्तर पर हम सभी को प्रयास करने होंगे। अभी हाल ही में हमने सुना कि एक स्कूल में बच्चों से कहा गया कि स्कूल का जो मैदान है उसमें हर बच्चे को अपनी पसंद का एक पौधा लगाना है, जिसमें हर बच्चे ने पूरे उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सखियों। अपने माता पिता से कहकर पसंद का पौधा खरीदा और स्कूल में जाकर बढ़िया उसको वृक्षारोपित किया, रोपित किया उसको। तो सखियों, कितनी खुशी की बात है ये कि कहने से बच्चों के मन में ये भावना तो आई कि पौधा

छोटे स्तर पे कार्य करने के लिए जानती हैं। वृक्षारोपण तो किया ही जा सकता है, एक दूसरे को जागरूक भी किया जा सकता है सखियों कि पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं लगाने के या पेड़ कटने से क्या नुकसान हैं और आगे जाके भविष्य में इनका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और जैसा कि उन बच्चों से कहा गया कि पौधों की देखभाल भी करनी है, तो ये बात यहाँ भी लागू होती है कि सिर्फ अकेला पौधे को रोपित कर देने से ही काम ख़त्म नहीं होता है या जिम्मेदारी हमारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है हमारी और जानकारी भी होती है कि उतनी जानकारी होना भी उतनी ही ज़रूरी है सखियों, क्योंकि कई बार हम जानकारी के अभाव में भी गलतियाँ कर देते हैं, तो उचित जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे पौधे को रोपित कर देने के बाद उसे कितने पानी की ज़रूरत है, धूप कितनी है देनी है, क्योंकि हर पौधे को पानी और धूप अलग अलग चाहिए होती है, तभी वे सही तरीके से बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है सखियों कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने पर पौधे गलने लगते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही हाल धूप का भी है, क्योंकि कोई पौधे को धूप में रखा रहने से कोई असर नहीं होता और कोई धूप में रखने से जलने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अब बात आती है छटाई की, समय समय पर कटाई की। जैसे ही आपको लगे कि पत्तियां रोगग्रस्त हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं या सूख रही हैं, तो उन पत्तियों को हटा देना ही बेहतर होता है या वहां से कटाई कर देना ही बेहतर होता है। साथ ही कीटनाशक और जैविक खाद का छिड़काव भी समय समय पर करती रहें, जिससे पौधा स्वस्थ बना रहे और उसमें नई शाखाओं की कोपल पनपती रहें। और एक चीज़ ये भी है सखियों कि गमले में अक्सर पौधे के साथ खरपतवार पनपने लगती है, तो पौधे के आसपास इसको हटाती रहें, जिससे पौधे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, पोषण मिलता रहे। और सखियों एक बात ये ज़रूर कहेंगे हम यहाँ कि पहले जब हम पौधा लगाते हैं तो छोटे गमले में ही लगाते हैं, और जब पौधा मिट्टी पकड़ लेता है, विकसित होने लगता है, तो उसे बड़े गमले में लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल सके। और अक्सर इस बात का ध्यान हमें नहीं रहता, एक बार लगा दिया और बस फिर उसे दूसरे में ट्रांसफ़र करने की हमें जानकारी ही नहीं होती, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और यदि आपने घर में ही पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, छोटा सा किचन गार्डन लगाया हुआ है, तब तो ये जानकारी होना और भी ज़रूरी हो जाता है सखियों, तभी तो आपका बगीचा अच्छा सुंदर फूलों से सजा रहेगा और हमेशा लहलहाता रहेगा। तो सखियों वन महोत्सव, पेड़ पौधों का रख रखाव, उनकी देखरेख, साज संभाल, मेंटेनेंस, ये सब बहुत ही विस्तार से बात करने वाले विषय हैं, यानी कि इन पर जितनी चर्चा गहराई से की जाए उतनी ही जानकारी बढ़ती है हमारी, समझ पाते हैं हम चीज़ों को। कि इस विषय पर हम फिर से वापस आएंगे, अभी अब हम आपको लेकर चलते हैं सखियों ज्योति पुंज के क्रम में। जाहिर है कि ये एक ऐसा क्रम है जहां हम महिलाओं के योगदान की बात करते हैं, उनकी दी हुई प्रेरणा की बात करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की बात करते हैं सखियों, इतिहास में उन्होंने क्या कार्य किए या उन्होंने जो कार्य किए उनकी बात करते हैं। तो इस क्रम में आज हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यानी कल 5 जुलाई को ही अंतिम सांस ली। जी हाँ, आप समझ गई होंगी कि पद्म विभूषण तीजनबाई आज का हमारा ज्योतिपुंज है सखियों, जिनकी मृत्यु की दुखद खबर कल दिनभर सुर्खियों में रही। तीजनबाई एक ऐसा नाम है सखियों जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने पंडवानी लोक शैली को प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचाया, देश विदेश में पहचान दिलाई और लगन और निष्ठा इतनी कि पंडवानी जो कला है उसे तीजनबाई के नाम से पहचाना जाने लगा। तो सखियों तीजनबाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के गनियारी ग्राम में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने पंडवानी गीत शैली को सीखना शुरू कर दिया, जो उस समय खासतौर पर पुरुषों द्वारा ही गाई जाती थी, और इस रूढ़ी को तोड़ा कि ये शैली सिर्फ पुरुषों द्वारा ही गाई जा सकती है, बल्कि महिलाएँ भी उतनी ही कुशलता और शक्ति से इसका प्रदर्शन कर सकती हैं। इस क्षेत्र में तीजनबाई का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है सखियों। उन्होंने इस लोक शैली को केवल जीवित ही नहीं रखा, बल्कि एक विशेष पहचान विश्व स्तर पर दिलाई, जिसकी वजह थी उनकी सशक्त आवाज़,

भावपूर्ण अभिनय और हाव भाव, जिसके कारण इस कला को एक नई दिशा मिली। और आज ये गर्व की बात है सखियों कि महिलाओं को पंडवानी सीखने और उसे प्रस्तुत करने के लिए तीजनबाई ने एक मंच खड़ा कर दिया। इसलिए आज महिलाएं भी इस कला को बखूबी अपना रही हैं, उसे प्रदर्शित कर रही हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है सखियों कि तीजनबाई ने पंडवानी कला को व्यक्तिगत प्रदर्शन से कहीं आगे ले जाकर एक सांस्कृतिक विरासत में बदल दिया और ये संदेश दिया कि पंडवानी न सिर्फ एक लोक गायकी की शैली है बल्कि एक परंपरा है, लैंगिक समानता का एक आधार है, सांस्कृतिक गौरव है जिसका एक सशक्त इतिहास है। और अब बात आती है सखियों पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की। तो सखियों तीजनबाई के योगदान को सराहने के लिए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मान भी दिए गए। 1987 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। हालांकि ये जगह बनाने में या ये मुकाम हासिल करने में उन्हें कई तरह की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा सखियों, लेकिन जब कोई दृढ़ संकल्प ले लेता है तो परिस्थितियों को भी मन मुताबिक होना ही होता है, ये बात बिल्कुल पक्की है सखियों। तो इस तरह से पूरा जीवन तीजनबाई ने पंडवानी शैली को एक पहचान दिलाने में, एक मंच दिलाने के लिए समर्पित कर दिया सखियों। और 70 वर्ष की उम्र में कल 5 जुलाई को ये सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो सखियों आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। और ये कोशिश होगी हमारी कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बात ज़रूर सिखाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हालात जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं रहते, कभी अवसरों की कमी होती है, कभी माहौल नहीं बन पाता, लेकिन हर हाल में लड़ना और आगे निकलना, अपनी एक जगह बनाना, ये हमें सीखना होगा, है ना। चलिए अब हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं सखियों। क्योंकि बारिश के मौसम में पेड़ पौधों की देखरेख तो हो जाती है, लेकिन उतनी ही व्यवस्थाएं घर को व्यवस्थित रखने के लिए भी करनी पड़ती हैं। छतों की जांच करनी होती है, कोई दरार कोई रिसाव तो नहीं हो रहा, नालियों का निकास सही है या नहीं, कहीं कोई कचरा जमा तो नहीं हो रहा, नहीं तो कई दिनों तक जमा हुआ पानी भी रिसाव की स्थिति बनाता है। दीवारों पर कहीं कोई सीलन जैसी दिखाई दे रही है या खिड़कियों की फ्रेम या चौखट से पानी अंदर आने की समस्या बन रही हो तो अभी समय रहते सुधरवाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश का सीज़न पीक पे होगा तो काम करवाना या मरम्मत करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार बारिश के दिनों में बिजली की वायरिंग की दुर्घटनाएं सुनाई देती हैं और कई बार नुकसान भी हो जाता है, इसलिए कहीं कोई वायरिंग निकली हुई है या कोई खुले हुए तार हैं तो उन्हें भी ठीक करना होता है। और बिजली से चलने वाले रसोई में जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं उनको बहुत ही सतर्कता से उपयोग किया जाना चाहिए, और उपयोग ना होने पर स्विच बोर्ड से प्लग निकाल कर रखें, जिससे कभी कोई शॉर्ट सर्किट की समस्या होती भी है तो हमारा उपकरण सुरक्षित बना रहेगा। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि रसोई के सारे कामों की जिम्मेदारी हम लिए रहते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही लिए रहते हैं सखियों, तो और बच्चों की परवरिश, उनकी देखरेख, उनका होमवर्क, परिवार के सदस्यों में कब किसको क्या चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हमें होती है और हम जिम्मेदारी से निभाते भी हैं। लेकिन बिजली का मेन स्विच कहाँ है, कोई भी परेशानी खड़ी होने पर तुरंत हमें क्या करना है, इस बात की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में तो कम से कम मेन स्विच किधर है, उसे कैसे बंद करना है, इतना सतर्क तो हमें होना चाहिए या होना ही होगा, क्योंकि अक्सर घर पर पुरुष जो हैं वो दिन में काम से बाहर गए हुए होते हैं और बच्चे पढ़ाई में व्यस्त होते हैं या स्कूल गए हुए होते हैं। चूँकि उस समय यदि आप घर पर अकेली हैं तो घर की पूरी जिम्मेदारी आप ही संभाल रही होती हैं। तो ये हैं छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इनको समझना, इनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है सखियों। बिजली का मेन स्विच हो गया, LPG का रेगुलेटर बंद कैसे करना है, बिजली के उपकरणों को इन दिनों लकड़ी की चौकी

0: पे रखकर उपयोग करना, ये बहुत काम की बातें हैं सखियों। और साथ ही इन दिनों कीट नियंत्रण की भी बहुत ज़रूरी होता है सखियों, क्योंकि मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं और नमी होती है, इस वजह से मक्खी मच्छरों की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए मच्छर भगाने के लिए उपाय तो किए ही जा सकते हैं, दरवाज़ों खिड़कियों में बारीक जाली भी लगा सकते हैं, जिससे मच्छर हैं या मक्खियाँ हैं भीतर नहीं आ पाएंगे। साथ ही पानी कहीं जमा ना होने का है कि घर में कहीं पर भी यदि पानी जमा हो रहा है तो मक्खियों के या मच्छरों के पनपने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो अपने को बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने पाए, है ना। तो सखियो, इस मौसम का लुत्फ तो हम लेंगे ही, लेकिन यदि थोड़ा सा और सूझबूझ से काम लेंगे तो मज़ा और दोगुना हो जाएगा। आइए, अब आज है माह का पहला सोमवार, और जानती हैं आप कि पहले सोमवार को एक क्रम होता है हमारा हेलो सखी, जिसमें हम अपनी सखियों से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, उनकी पसंद नापसंद, वे क्या करती हैं, किन चीज़ों को करने में उनकी रुचि है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हेलो सखी, जिसमें सखियों से बातचीत कर रही हैं हमारी सखी सुब्रता यादव।
1: सखियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो सखी में। आइए जुड़ते हैं हमारी पहली कॉलर से और जानते हैं उनके विचार। हेलो सखी कार्यक्रम।
2: मैं ग्राम हनौतावारी से, तहसील बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से भावना हरवा।
1: भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या करती हैं आप?
2: मैम अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ, सेकंड ईयर है मेरी।
1: सब्जेक्ट क्या है आपके?
2: मैम मेरा BSc है, जूलॉजी मेजर।
1: क्या सोचा है आपने भविष्य में क्या करना है आपको?
2: मैम मुझे UPSC देना है।
1: UPSC के लिए आप अभी से तैयारी करिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ। हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं आप
2: जी?
1: कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको?
2: बहुत अच्छे हैं, पापा भी सुनते हैं।
1: अच्छा, तो दोनों लोग कार्यक्रमों को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है
2: जी।
1: भावना जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अब देखिए मानसून आ गया है, तो ऐसे में अब पेड़ पौधे लगाने का समय आ चुका है। आप बताइए, आपने कोई पेड़ लगाया है कभी?
2: हाँ।
1: कौन सा पौधा लगाया?
2: मैम मैंगो का पेड़ भी लगा है मेरे यहाँ, और अमरूद का भी लगाया था।
1: अच्छा, यानी खाने पीने के पेड़ लगाए हैं आपने। भावना जी बताइए, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर आपको समय मिलता है तो क्या करती हैं, किस चीज का शौक है आपको?
2: मैम मुझे सिंगिंग का बहुत शौक।
1: अच्छा, खेलने का कोई शौक है आपको?
2: मैं कबड्डी खेलती हूँ, और कई बार खेली है मैंने कॉलेज में, और जीती भी हूँ, मुझे मेडल भी मिले हैं।
1: बहुत अच्छी बात है भावना। इस तरह के जो खेल होते हैं ना, इनसे हमारा मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास तो होता ही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को खेल में आगे आना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो जो आपको जीवन में कुछ प्रेरणा दे गया हो तो बताइए, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ।
2: मैम हम लोग कबड्डी खेलते हैं, तो कुछ गांव में कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए, बट मैं कहती हूँ खेलो, आगे बढ़ो, और अपने घर का और पूरे देश का नाम रोशन करो।
1: क्या बात है। चलिए भावना जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर, आपके जज्बे को सुनकर, और हमारी यही कामना है कि आप बहुत आगे बढ़ें। अब बता दीजिए, आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?
2: तेरी उंगली पकड़ के चला।
1: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम का नाम है हेलो सखी।
1: ममता बोल रहा
0: ग्राम से। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सखी क्या कर रही थी?
1: कुछ नहीं, बस ऐसे फ्री थे तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही तो फोन लगाया।
0: तो ममता जी खाना पीना बन गया आपका?
1: हाँ मैं बन गया, खा लूँ।
0: अच्छा क्या बनाया था आज आपने?
1: आज हमने भिंडी की सब्जी बनाई थी।
0: भिंडी में बहुत अच्छा फाइबर होता है तो सेहत के लिए भी अच्छी है।
1: हाँ जी मैम।
0: ममता जी आप ये बताइए आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करती हैं?
1: मैम ये साफ सुथरा पानी यानी साफ सुथरा घर में रखते हैं, बच्चों को अच्छे से रखते हैं, धूल मूल में नहीं जाने देते।
0: हाँ ये तो आपने बताया बच्चों का, हमें आप बताइए आप स्वयं के लिए क्या कर रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रही हैं?
1: अपना भी हम रखते हैं अच्छे से, सब खाते पीते अच्छे से, साफ सुथरे कपड़े पहनते, सब अच्छे से खाते हैं।
0: कुछ टहलने वगैरह जाती हैं?
1: हाँ मैम जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, मंदिर है माता जी का।
0: तो सखी आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज का शौक है आपको?
1: हमें मैं गानों का शौक है।
0: गाना गाने का कि गाना सुनने का?
1: सुनने का।
0: अच्छा
1: हेलो सखी जी आता है ना, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है।
0: जी जी धन्यवाद
1: आपका। कार्यक्रम आता है ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे श्रोताओं के लिए ये सारे कार्यक्रम है, आप लोगों की जब इसमें सहभागिता जुड़ती है तो कार्यक्रम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। ममता जी कोई ऐसी बचपन की कोई खेल की याद या फिर कोई बचपन की ऐसी याद आपको याद आती हो तो बताएं, कोई किस्सा बचपन का याद आ रहा हो?
1: बचपन का तो बहुत याद आता है, पिछला बचपन तो बहुत याद आता है, कभी कभी अकेले बैठ के बहुत याद करते हैं।
0: अच्छा कितनी उम्र में शादी हो गई थी आपकी?
1: 18।
0: तो किस तरह का बचपन था आपका बताइए ना, कुछ क्या याद आता है, क्या खेलती थी आप?
1: स्कूल जाते थे, स्कूल में लंगड़ी कबड्डी कैरम वो खेलते, सब खेलते थे, सब याद आता है।
0: अब बच्चों के साथ खेलती हैं वो गेम दोबारा?
1: हाँ मेरी लड़की छोटी थी वो कभी कभी जिद करती है, बोलती है खेलो मम्मी खेलो ये खेलो, उसकी गुड़िया से खिलाती बोलती है मेरी गुड़िया के साथ खेलो ये, बहुत जिद करती है तो कभी कभी उसके साथ खेलती हूँ।
0: तो बचपन वापस याद आ जाता है?
1: वो बहुत याद दिलाती है बचपन की बातें।
0: अच्छा अच्छा आपको कोई अपनी माँ की प्रेरणादायक सीख याद आती हो तो बताएं?
1: माँ की सब बातें याद आती है, शादी हुई थी जब बोलती बेटा अच्छे से रहना, कभी ना किसी से लड़ना ना भूलना, साफ सुथरे से अच्छे से बना के चलना, ना कभी सास से लड़ना, सब अच्छा समझाती मेरी मम्मी।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें बताती थी आपकी माँ। अब आप स्वयं माँ बन चुकी हैं तो अपने बच्चों को भी ये बातें बताइए, और बचपन तो आप उनके साथ जी ही रही हैं।
1: हाँ मेरी लड़की है वो बहुत याद दिलाती है।
0: चलिए अच्छा है, बच्चों के साथ खेल लिया करिए।
1: आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी धन्यवाद।
1: सोमवार को 8:30 बजे सुबह 7 बजे से मोबाइल चालू कर देती
0: हूँ। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है?
1: खाने में अरबी की सब्जी।
0: अरबी की सब्जी, आपने तो बहुत अलग चीज बता दी, बताइए हर मौसम में तो मिलती भी नहीं है
1: वो। अच्छी लगती है मुझे, अभी तो कल मंगलवार था ना, कल मार्केट गए थे तो हमने 1 किलो मंगवाई थी।
0: अच्छा
1: बहुत पसंद लगती, बहुत पसंद है।
0: हमने बहुत यूनिक सुना आपका, पता है बहुत कम लोगों को सुना होगा मैंने जिनको अरबी की सब्जी बहुत पसंद हो, मुझे आप ही मिली है।
1: वो विटामिन चीज है, बहुत फायदेमंद है।
0: हाँ बहुत फायदेमंद चीज है। चलिए बताइए बनाती कैसे आप अरबी की सब्जी, रसेदार वाली पसंद है कि दही के साथ बनती है? एक
1: वो दही के साथ भी बना लेते, ऐसे कच्ची छील के तेल में तल के ऐसे भी बना लेते, उबेल के भी बना लेते।
0: अच्छा आप बहुत तरीके से बनाती हैं यानी?
1: हाँ दोनों साइड से बना लेते, कच्ची छील के गोल गोल काट के वो तेल में तल के वो भी बना लेते।
0: और मसाले वाली भी बनती है एक,
1: जैसी खाना वैसी बना लेते।
0: हाँ हमें तो दही वाली अच्छी लगती है।
1: हाँ वो भी बहुत अच्छी लगती है दही वाली, लेकिन गाँव में दही नहीं मिलता ना, मैं मार्केट जाकर भी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा आपकी पसंद और बचपन के बारे में जानना।

0: बताइए, आपने बोला आपको गानों का बहुत शौक है, बताइए आज कौन सा गीत सुनवा दें?
1: कोई सा भी सुनवा देना, विवाह के लिए बताओ।
0: आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

0: तो सखियों, निश्चित तौर पर आप सभी को सखियों से की हुई ये बातचीत पसंद आई होगी जो हमने अभी सुनी, और बातचीत कर रही थी सुब्रता यादव। चलिए कार्यक्रम में और भी हम मौसम की, बारिश के मौसम की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
0: चलिए सखियो, फिर से हम बारिश के मौसम की बात करते हैं। तो सखियो, इस मौसम में जितना घर का ख्याल, बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उतना ही अपनी त्वचा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन की समस्या भी अपने पांव पसारती है। इसलिए उचित साफ़ सफाई, हाथ पैरों का ख्याल रखना, सही कपड़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी है।

0: हो जाता है। तो सखियो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। आगे हम फिर से हाजिर होते हैं, रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: चलिए सखियों, नुस्खों की बात कर रहे थे हम, तो हल्दी चंदन, मुल्तानी मिट्टी, नीम, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग हम कर सकते हैं अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए, और समय समय पर इनको उपयोग करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। आलू को कद्दूकस करके भी उपयोग किया जा सकता है। तो सखियों, छोटे छोटे नुस्खों को आप अपनाइए, इन्हें करके देखिए, और कार्यक्रम बिंदिया आपको कैसा लगा ये लिखकर हमें ज़रूर बताइए। पता तो आप जानती ही हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9770432297। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमें दीजिए अनुमति, और आप सुनती रहिए आकाशवाणी सागर।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम विद्या। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं परिचर्चा। विषय है विश्व जूनोसिस दिवस। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीलेश शाह, पशु चिकित्सक अधिकारी, डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, HOD कम्युनिटी मेडिसिन, और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं डॉक्टर सुमित रावत। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं GIZ नई दिल्ली। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस परियोजना में मध्य प्रदेश शासन का पशुपालन एवं डेयरी विभाग नोडल विभाग के रूप में सहयोग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट GIZ के तकनीकी सहयोग से सागर जिले में संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मानव, पशु एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करना है तथा वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यदि हम दवाओं का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग करें, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान दें एवं रसायनों और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करें तो हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश के सागर जिले में किसानों, पशुपालकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों में भाग लें और वन हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
2: और हाँ साथियों, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महीने के आखिरी शुक्रवार को शाम 7:20 पर आकाशवाणी सागर द्वारा रेडियो कार्यक्रम वन हेल्थ रियल वेल्थ भी प्रसारित किया जाता है। तो अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ इस कार्यक्रम को भी जरूर सुना कीजिए। धन्यवाद।
3: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद खास विषय के ऊपर हम ये परिचर्चा करने जा रहे हैं। जूनोसिस बीमारियां क्या होती हैं? उन संक्रामक बीमारियों को कहा जाता है जूनोसिस बीमारी जो जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवर में फैलती हैं। तो जूनोटिक बीमारियों के महत्व व इनके रोकथाम पर हम विस्तार से आज चर्चा करने जा रहे हैं और इस संबंध में तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर नीलेश शाह साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर से। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुमित रावत साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। तीनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले डॉक्टर नीलेश शाह साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व जूनोसिस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है ये दिवस?
4: जी बिल्कुल, विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर जी द्वारा प्रथम बार रेबीज वैक्सीन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जूनोटिक बीमारियों के संबंध में आम व्यक्तियों में जागरूकता लाना है तथा उनको शिक्षित करना है एवं इन बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंधित उपायों से आम जनता को अवगत कराना है।
3: जी, जागरूक करना प्रमुख मकसद है जूनोटिक बीमारियों के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि जूनोटिक बीमारियां क्या होती हैं और कौन कौन सी खास जूनोटिक बीमारियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता साहब,
5: डॉक्टर ने बताया कि जूनोटिक बीमारियां वो बीमारियां हैं जो कि हमें जानवरों से मनुष्यों में हो सकती हैं, साथ ही साथ मनुष्यों से जानवर में भी हो सकती हैं। तो जूनोटिक बीमारियाँ कई प्रकार की होती हैं, इनकी कॉजिटिव एजेंट्स कई सारे होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, प्रोटोजुआ भी होता है, फंगस भी हो सकते हैं। और जैसे कि बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज में ब्रुसेलोसिस इंपॉर्टेंट है, प्लेग होता है, फिर लेप्टोस्पोरोसिस हो सकता है मुख्यतः देखा जाए तो। वायरल जूनोटिक डिजीज में रेबीज हैं, जीका वायरस डिजीज हो गया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटोजुअल डिजीजेज हैं, जिसमें कि टीनियाटिस हो गया, हाइडेटिस सिस्ट वाला जो अपना है ये, और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि इनके फैलने का तरीका क्या होता है, क्या ये काटने से होता है, खाने से होता है, या सीधे जानवरों के संपर्क में आने से होता है?
5: जूनोटिक डिजीज का फैलाव ट्रांसमिशन मतलब 5 प्रकार से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, यानी कि हम किसी ऐसे जानवर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं जो कि ये तो कैरियर हो जूनोटिक का, या कि जूनोटिक जिसको बीमारी हो। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मतलब ऐसे जानवर के बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से, बलगम से, यूरिन से, या उसके अदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि उस जानवर के काटने से या स्क्रैच करने से, ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, जैसे कि हम अगर जानवर के बाड़े में गए तो, और हमने वहाँ पे जानवर के बाड़े में गए और वहाँ पे आसपास जो सरफेस को छू लिया, या पानी दिया जाता है जिसमें उनको खिलाया जाता है, या सरफेस को टच कर लिया, तो ऐसी चीज़ों को फोमाइट्स कहते हैं। तो फोमाइट्स के द्वारा भी हो सकता है कि इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तीसरा तरीका हो सकता है कि वेक्टर जनित। कई बार ऐसा होता है कि जो जूनोटिक डिजीज में जानवर से मनुष्य तक जो बीमारी के एजेंट को लाता है वो एक वेक्टर होता है जो कि ऑर्थोप्रोड होता है, एक कीड़ा होता है जो मच्छर या मक्खी होता है, उसके काटने से जानवर से मनुष्य में हो सकता है। तो वेक्टर जनित हो सकता है। फिर चौथा हो सकता है इसमें खाद्य जनित, या वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न। तो जैसे फूड बॉर्न में अगर हमने अधपका मांस या अधपका अंडा खाया, या गैर पाश्चरीकृत मिल्क अगर दूध का हमने उपयोग कर लिया, तो उससे हो सकता है। फिर वाटर बॉर्न हो सकता है कि हमारा जो पानी है वो दूषित हो, अगर उसमें जानवर के मल या मूत्र उससे अगर कंटामिनेटेड हो, दूषित हो, तो जलते भी हो सकता है। और आखिरी हो सकता है कि एरोसोल रूट से, मतलब जैसे किसी जानवर को अगर सर्दी खांसी जुकाम है, तो उसकी खांसी से जो अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स को अगर हिम्मत ने इनहेल कर लिया, तो उससे हो सकता है। एरोसोल का एक तरीका और हो सकता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में अगर उसके मल के और उसके कण अगर दूषित है, मतलब उससे मिट्टी में है, और उसका जो धूल अगर हमने इनहेल कर ली, तो ये तरह से भी जूनोटिक डिजीज ह्यूमंस में हो सकती है। मतलब ये 5 तरीके से ये डिजीजेज जानवर से ह्यूमंस में आ सकती हैं।
3: जानवरों से मनुष्य में जो जूनोटिक बीमारियां आती हैं, 5 प्रमुख प्रकार जो होते हैं, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया डॉक्टर गुप्ता साहब। डॉक्टर सुमित रावत साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि जानवर और मनुष्य की बात हो रही है और हम एक पर्यावरण में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सामान्य मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है। वन हेल्थ की बात की जाती है, वन हेल्थ कितना ज़रूरी है, जिसमें हम जानवरों की बात भी कर लें, मनुष्यों की बात भी कर लें, और हमारे पर्यावरण की बात भी कर लें।
6: जी दीपक जी, वन हेल्थ जो है, इसको पहले हम वासुदेव कुटुंबकम भी कहते थे, यानी कि हम सभी लोग जो हैं, चाहे वो फूल पत्ती हों, पेड़ हों, कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों और हम हों, एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। तो आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ये जो वन हेल्थ है, इसको महत्व दिया जा रहा है, और

0: आप देखेंगे कि जो बीमारियां हैं इनका जो एक पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यानी कि एक जोक आपको सुनाता हूं कि मच्छर ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा आजकल मलेरिया बहुत कम हो रहा है, तो तुम कोई नया कोर्स क्यों नहीं कर लेते डेंगू या चिकनगुनिया का। तो ये भी एक हंसी मजाक में बात कही जाती है।
1: पैटर्न कैसे बदल रहा है बीमारियों
0: जी,
1: का?
0: तो आजकल आप देखेंगे कि जैसा हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गांव में जो गंदा पानी होता था या नालियों का पानी होता था, वो आजकल कूलर के पानी से लेके और टायरों में भरने वाले पानी ने उसकी जगह ले ली है। और इसमें ऐसे मच्छर पनपते हैं जो डेंगू चिकनगुनिया जैसी और जीका और इवन जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं। जैसे खेती में भी परिवर्तन आया है, पहले केवल हम गेहूँ की खेती करते थे, लेकिन आजकल धान की खेती भी सभी जगह होने लगी
1: होने
0: है।
1: लगी है।
0: मध्य प्रदेश में धान की खेती के साथ जैपनीज इंसेफेलाइटिस का प्रवेश भी हुआ, और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग आजकल ये जो जापानी बुखार कहलाता है ये भी एक जूनोसिस है, तो ये काफ़ी देखने को मिल रहा है।
1: पहले
0: जी,
1: इतना नहीं देखने में आता था, ये
0: पहले इतना देखने में नहीं मिल रहा था
1: कुछ खास
0: इसमें।
1: क्षेत्रों में फैला हुआ था।
0: जी, एक और जूनोसिस की मैं बात करूंगा, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है।
1: जी
0: ये
1: जरूर।
0: मलेशिया से शुरू हुई और भारत तक इसने प्रवेश किया। बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम नीपाह बोलते हैं। तो नीपाह करके एक गाँव है मलेशिया में, 1998 में यहाँ पे क्या हुआ कि सुअर पालन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, तो इन लोगों ने जो सुअर पालन के जो फार्म्स थे वो काफ़ी बढ़ा दिए, तो पिग्स की ये फार्मिंग करते थे। बहुत सारे जंगल इन्होंने काट दिए। जंगल काटने की वजह से जंगल में जो बैट्स होते थे, जो चमगादड़ होते थे, उन्होंने अपना जो ठिकाना है वो बदल दिया, क्योंकि पेड़ अब उनके पास रहे नहीं। तो उसके आसपास के पाम ट्रीज थे, वहाँ से वो जो उसके डेट्स थे उसका रस पीने लगे, और वो ये पिग्स के संपर्क में, सुअरों के संपर्क में आए, और उनसे सुअरों को बीमारी फैली। फिर सुअरों से जो सुअर पालक थे उनको, मनुष्यों को बीमारी फैली, और उसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई अचानक से बुखार आने के बाद। तो वहाँ से नीपा वायरस की पहचान हुई। ये वायरस केरला से भारत में प्रवेश किया लगभग 2003 के आसपास, 3-4 बार इसके आउटब्रेक हुए, और कलकत्ता, बांग्लादेश, अब सभी जगह ये देखा जाने लगा है। तो नीपा का प्रवेश खास तौर से एशिया के लिए एक बड़ी खतरनाक, और ये बड़ा एक एग्जाम्पल है कि बीमारियों का परिवर्तन कैसे होता है, जूनोसिस किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जंगल के जानवर हैं खास तौर से जो बैट्स हैं जो केव्स वगैरह में रहते थे, अब वो शहरों तक आ
1: शहरों की
0: गए
1: तरफ
0: हैं।
1: आ रहे हैं।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ा कारण है कि उनका जो पर्यावास है, रहवास है, वो बदल रहा है और शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो मनुष्यों से संपर्क बढ़ गया है उनका। डॉक्टर
0: जी
1: नीलेश साह साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में जो बीमारियां होती हैं, क्या वो कैरियर होते हैं या उनमें बीमारियां होती हैं तभी मनुष्य में आता है? क्या लक्षण कैसे होता है, पहचान कैसे करें? या फिर जंगली जानवरों के माध्यम से ही फैलता है या पेट से भी फैल सकता है जो पालतू जानवर होते हैं?
2: जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, दो तीन परिस्थितियां रहती हैं। एक परिस्थिति तो यह है कि उस पशु में या पक्षी में या वन्य प्राणी में उस बीमारी के लक्षण दिखेंगे, और लक्षण दिखने के बाद जब कोई मनुष्य संपर्क में आएगा तो मनुष्यों में भी हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल दूं, रेबीज़। रेबीज़ में आपको अगर किसी डॉग को रेबीज़ हुआ है या कैट को रेबीज़ हुआ है, उसमें सिम्टम्स दिखेंगे और वो किसी मनुष्य को अफेक्ट कर सकता है अगर वो काट लेता है तो। एक होता है कैरियर। कैरियर में क्या होता है कि एनिमल्स खुद उस बीमारी के वाहक तो होते हैं लेकिन उस बीमारी से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित मतलब उनमें उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे, ना ही उस बीमारी से उन पशुओं की मृत्यु होगी, लेकिन जब वो मनुष्यों में आ जाएगा वो बीमारी, तो मनुष्य उससे प्रभावित होते हैं, उनमें सिम्टम्स भी आते हैं, और अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा रही तो डेथ भी हो सकती है। जैसे कि सर ने अभी निपाह वायरस का एग्जाम्पल दिया, तो जो चमगादड़ रहती हैं वो इसका कैरियर हैं, ठीक है ना, कैरियर हैं, लेकिन जब वो मनुष्यों में आएगा तो मनुष्यों में उसके लक्षण दिखेंगे। इसी तरीके से रेबीज़ का अगर हम उदाहरण दें तो कुछ वन्य प्राणी रेबीज़ बीमारी के भी कैरियर होते हैं, तो वो उससे उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब वो किसी डोमेस्टिक एनिमल या पालतू पशु को काट लेंगे और जब उसमें रेबीज़ आएगा तो उसमें सिम्टम्स परिलक्षित होंगे। तो कहने का आशय है कि दोनों तरीके हो सकते हैं, मतलब लक्षण आ भी सकते हैं, वो अलग अलग बीमारियों का पैटर्न है, और कुछ बीमारियों में एनिमल कैरियर हो सकते हैं। जूनोटिक बीमारी में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये पशुओं से मनुष्यों में तो फैलती ही है, लेकिन कुछ बीमारियां फिर मनुष्यों से मनुष्यों में भी तेज़ी से फैलती हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति बनती है। समझ लीजिए किसी वाइल्ड एनिमल से कोई बीमारी मनुष्य में आ गई, एक में आ गई, जैसे बर्ड फ्लू का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बर्ड से मनुष्य में आ गई, लेकिन वो मनुष्यों से मनुष्यों में बहुत तेजी से फैलती है और उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है।
1: पहला जो उसका कैरियर रहा वो जानवर रहा, जानवर से मनुष्य में आया
2: जी,
1: फिर मनुष्य से मनुष्य के बीच में

0: उसका संचरण हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। डॉक्टर गुप्ता साहब, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कई बार जो अपना पॉजिटिव एजेंट है वो अपने में चेंजेस कर लेता है, वायरस अपने आप में चेंज कर लेता है कि जो जूनोटिक डिजीज थी अब वो अपने आप को ऐसे बदल लिया इंसान में आकर के, कब इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस जब पहला इन्फेक्शन था तो किसी जानवर से इंसान में आया और आज वो इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होता है क्योंकि वायरस ने अपने आप में चेंजेस कर लिए। तो बिल्कुल इस तरह से हो सकता है।
0: वायरस जो डॉक्टर रावत म्यूटेट करते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो क्या वो ह्यूमन स्ट्रेन में आके बदल जाते हैं?
2: जी जी, वायरस में जब म्यूटेशन आते हैं या अडेप्टेशन हो जाता है उसका नए होस्ट में, तो कभी कभी वो मनुष्य तक ही सीमित हो जाते हैं या अपने नए होस्ट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ऐसा कोरोना वायरस में भी हुआ कि कोरोना वायरस कहीं बाहर से आया था। अब उस पर कई प्रकार की थ्योरी हैं, बट अगर अपन इन जनरल बात करें तो एक बार वो मनुष्यों में आ गया तो अब वो मनुष्यों में अच्छी तरह से ढल गया है और अब उसका प्रचार प्रसार हमने देखा कि बहुत तेज़ी से हुआ, लगभग पूरे विश्व में फैल गया। तो इसी तरह की हिस्ट्री हमको कई सारे जूनोसिस में देखने को मिलती है कि शुरुआत किसी जानवर से होती है। जैसे कि स्वाइन फ्लू की भी अगर अपन बात करें तो इसमें मजे की बात यह है कि स्वाइन को किसी प्रकार का फ्लू नहीं होता है इसमें। उसका केवल जो नाम है वो भ्रामक है। फ्लू मनुष्य को होता है, स्वाइन को फ्लू नहीं होता है, लेकिन वो स्वाइन से ह्यूमन में आया है इसीलिए हम उसको नाम देते हैं स्वाइन फ्लू। और मनुष्यों में ये बहुत ज़्यादा फीवर होता है। यहाँ पे स्वाइन जो है वो एक एम्पलीफायर का काम करता है, यानी कि उसके शरीर में मान लीजिए 2 वायरस प्रवेश करे थे और वो 200 से उसने 2 लाख या 2 करोड़ वायरस बना दिए, तो उसने केवल एक एम्पलीफायर का काम किया,
0: बहुगुणित कर दिया उसको।
2: जी, बहुगुणित कर दिया और उसको हजारों मनुष्यों में फैला दिया।
0: जी, ये जो स्ट्रेन म्यूटेशन के बाद होता है
2: जी,
0: कमजोर भी पड़ता है या स्ट्रांग होता जाता है, क्या इसकी लक्षण?
2: दोनों चीजें हो सकती हैं, ये कमजोर भी पड़ सकता है और मजबूत भी हो सकता है। तो जो जलवायु परिवर्तन हम कहते हैं, तो हमने देखा कि कई बीमारियां जैसे पोलियो धीरे धीरे करके उसके सीमित प्रकार के, पोलियो जूनोसिस नहीं है, खैर मनुष्यों की ही बीमारी है,
0: उदाहरण के लिए
2: दे रहा हूं कि पोलियो वायरस को हमने देखा कि धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया और हमने बहुत वैक्सीनेशन किया तो पोलियो को हमने लगभग इरेडिकेट कर दिया, भारत से तो पूरी तरह से गायब हो गया। विश्व में भी अधिकतर देशों में पोलियो नहीं है। तो इस तरह से वायरस जो हैं समय के साथ कमज़ोर भी पड़ते हैं, परंतु समय के साथ ये मजबूत भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनको किस तरह के होस्ट मिल रहे हैं। ह्यूमन की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी, जिस तरह की हम लोग आजकल चीज़ें करते हैं, धूम्रपान है और अन्य नशा आदि करते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो इससे वायरस को अधिक बल मिलता है और वो अधिक तेज़ी से प्रचार प्रसार होता है। हम जहाँ भीड़ लगाते हैं जैसे मेट्रो हो गया और पब्लिक फंक्शंस हो गए, तो इससे उसको बल मिलता है और वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है।
0: कोरोना में बहुत नज़दीक से इन बीमारियों के म्यूटेशन को, प्रसार को लोगों ने देखा है। डॉक्टर गुप्ता साहब, आपने ये बताया कि जो बीमारियाँ होती हैं वो फैलती हैं बहुत तेज़ी से, तो मनुष्यों के अंदर ये जो बीमारियाँ होती हैं इनके प्रसार के रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: जूनोटिक डिजीज़ के प्रसार के रोकथाम के लिए हमें पहले देखना है कि उसका प्रसार किस तरह से हो, जैसे प्रसार हो जैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, हमें ट्रांसमिशन को ब्रेक कर देना है। तो ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए कई तरीके हैं। पहले तो हम जानवर में ही बीमारी को कम कर दें, क्यों ना हम जानवर में ही जो उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको कम कर दें, जानवर को ही बीमार ना होने दें। तो उनका सर्विलेंस पूरा होना चाहिए, एनिमल में सर्विलेंस ऑफ डिजीज़, और उसको हम वहीं पर अगर सर्विलेंस करके ट्रीट कर दें, उसको बढ़ने ना दें, तो ह्यूमंस तक आएगा ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप। हमें सिर्फ पानी और साबुन से हाथ धुलना है, जैसे हमने बताया था इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जब वो व्यक्ति किसी जानवर के बाड़े में जाता है या मुर्गी के बाड़े में जाता है, तो वो भले उसने टच ना किया हो तब भी अगर वो हाथ साबुन से धुलेगा तो बहुत इजीली मतलब इंजरीज बच सकता है। ये चीज़ हमें बच्चों को भी बताने की जरूरत है, जब भी वो खेल रहे हों अगर आसपास जानवर हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए साबुन और पानी से हाथ धोने का। तीसरा हो सकता है वैक्सीनेशन। हम वैक्सीनेशन जानवर का भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं जिससे कि वो उससे बीमारी ना हो, और ज़रूरत पड़ने में मनुष्यों का, जैसे कि रेबीज के केस में हमारा जानवर भी वैक्सीनेट होता है, और जो मनुष्य हैं जिनके घर में उनने पेट रखा वो भी वैक्सीन ले सकते हैं अगर एक्सपोजर हो जाए तो। फिर इसका हो सकता है कि जैसे हमने बोला वेक्टर जनित भी हो सकता है, कई बार वेक्टर से भी हो सकता है, तो हम वेक्टर्स को भी कम करने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मच्छर और मक्खियों के कम करने के लिए हमका ब्रीडिंग प्लेस कम कर दें। जैसे कि मच्छरों में हमारा लार्वा और एडल्ट दोनों के अलग अलग मेजर्स हैं, तो लार्वा एंटी लार्वा मेजर्स में हमारा हो सकता है कि हम सोर्स रिडक्शन, तो जैसे जहाँ पे मच्छर पनपते हैं गड्ढे हो गए पानी भर गया तो हमें वो गड्ढे नहीं रहने देना, उसको फिल कर देना डिच को। देन कूलर को हमें हर हफ्ते साफ सफाई करना है, गर्मी में जब भी निकालें तो उसको अच्छे से पेंट करना है और उसमें खाली करना है, एकदम ड्राई करना है, और अगर नहीं कर पा रहे तो हम उसमें एक टेमीफॉस या फिर केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल एक चम्मच डाल देंगे तो भी चल जाएगा। ये हो गया हमारे वेक्टर का। फिर एंटी लार्वल मेजर्स में केमिकल मेजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा पेरिस ग्रीन हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं उससे भी लार्वा मर जाते हैं। फिर इसके अलावा हो सकता

0: लार्वा के खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल तरीके भी हैं। उसमें हमारा लार्वीवोरस फिश होती है, जो कि गंबूसिया फिश होती है, जो कि मच्छरों के लार्वा को खाती है। तो हम पानी में अगर गंबूसिया फिश को पालेंगे, छोड़ देंगे, तो वो मच्छर के लार्वा को ख़त्म कर देगी। देन इसके बाद आता है एंटी एडल्ट मेजर। एंटी एडल्ट मेजर्स मतलब जो मतलब एडल्ट मॉस्किटो के लिए, तो उसमें हमारा हो सकता है भाई कि रेजिडुअल स्प्रे, जो हमारा इंसेक्टिसाइड, जो हमारा कीटाणु नाशक होता है, उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें रेजिडुअल स्प्रे होता है, स्पेस स्प्रे होता है। तो रेजिडुअल स्प्रे मतलब जैसे DDT या BSC के स्प्रे करते हैं, मतलब घर में और उसके आसपास कर सकते हैं। फिर स्पेस स्प्रे करते हैं जिसमें कि पायरेथ्रिन का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा हो सकता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड हो सकता है, जिससे कि हम मच्छर को स्टराइल बना देते हैं कि वो फिर आगे प्रजनन ही न करने पाए। तो मच्छर को कंट्रोल करने के लिए तरीके अपना सकते हैं।
1: प्रसार के चेन को ब्रेक करना ये मुख्य मकसद है। डॉक्टर नीलेश शाह साहब, मनुष्य और पशु का संपर्क कहीं ना कहीं होता है। पशुओं को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से रखा जाए जिससे मनुष्यों में इस बीमारी का प्रसार ना हो?
2: जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पशुओं और मनुष्यों के बीच एक उचित दूरी होना आवश्यक है। हर प्रकार के एनिमल होते हैं, कुछ पेट एनिमल होते हैं, कुछ स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, चूँकि पशु बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित भी हो सकते हैं, उसमें कैरियर भी हो सकते हैं, तो पशुओं से उचित दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखने में आ रहा है, खासकर डॉग्स और किट्स के मतलब जो पालते हैं, कि उनसे हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ रहती हैं। उनको साथ में सुलाते हैं, उनको एक ही थाली में एक साथ खाते हैं, उनके वॉशरूम में एंट्री रहती है, तो इतनी नज़दीकी की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पालना है तो उचित दूरी बना के पशुओं को पाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आप अगर पशु पाल रहे हैं तो उन पशुओं की दूरी आवारा पशुओं से भी रखना आवश्यक है। मतलब बीच का कोई तरीका नहीं हो सकता है कि हमारा जो भी डॉग है, पेट है, वो घर पर भी है, फिर बाहर के जो स्ट्रे एनिमल्स है उसके संपर्क में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स बहुत सारे बीमारियों के कैरियर भी हो सकते हैं, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। तो स्ट्रे एनिमल्स से उनका डिस्टेंस रखना बहुत आवश्यक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, खासकर जो फॉरेस्ट एरिया से लगे हुए क्षेत्र हैं या गांव हैं, वहाँ के पशुओं की वाइल्ड लाइफ से डिस्टेंस रखना आवश्यक है। ये तीन बात हो गई। चौथा, जिन जिन बीमारियों का पशुओं में टीकाकरण हम कर सकते हैं, हमें निश्चित रूप से करवाना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख रेबीज़ है। अगर किसी को डॉग या कैट रखना है घर पर, तो उसमें आपको 100% वैक्सीनेशन पशुओं का करवाना आवश्यक है, बंधनकारी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। रेबीज़ हो गया, लार्ज एनिमल में ब्रूसेला वैक्सीन होती है जो कि जूनोटिक है, एंथ्रेक्स वैक्सीन होती है जो कि जूनोटिक है। तो जिन जिन बीमारियों का वैक्सीनेशन हो सकता है वो पशुओं में कराना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि डिवर्मिंग मतलब जो पेट के कीड़ों की दवाई है, वो पशुओं में डॉग हो, कैट हो, या लार्ज एनिमल हो, जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पैरासिटिक डिजीज जो हैं वो एनिमल्स से ह्यूमन में आ सकती हैं। तो जब हम उनकी डिवर्मिंग कराएंगे, रेगुलर डिवर्मिंग कराएंगे, तो उन बीमारियों की मनुष्यों में होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें, और सर ने जैसे कि वेक्टर कंट्रोल बताया ही है मनुष्यों के लिए, तो हम वेक्टर का कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन पशुओं को भी वेक्टर्स से सुरक्षित रखें। पशु बाड़े में मच्छर ना हो, मक्खियाँ ना हो, माइट्स हैं, फ्ली हैं, अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, उनका नियंत्रण रखना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हमें जो वेक्टर्स हैं उसके लिए कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि माइट्स से स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी हो जाती है, एक CCHF है, क्रीमियन कांगो हिमोरेजिक फीवर, वो टिक्स के माध्यम से फैलती है। ऐसे ही एक कैनासूर फॉरेस्ट डिजीज़ है जो बंदरों से टिक्स के माध्यम से मनुष्यों में फैलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ बीमारियाँ चूहों के माध्यम से भी फैलती हैं, जैसे कि उसका एक प्लेग तो एक मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है, और बाकी और भी अनेकों बीमारियां हैं जो चूहों के माध्यम से फैलती हैं। तो घर में चूहों का नियंत्रण करना अच्छी तरीके से, पशु बाड़े में चूहों का नियंत्रण करना, वेक्टर का नियंत्रण करना, इन सब तरीकों से हम बहुत सारी बीमारियों का नियंत्रण एवं रोकथाम कर सकते हैं।
1: जी, बहुत विस्तार से आपने उपायों के बारे में बताया कि कैसे हम बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं, पशुओं से प्रसार होने से बचा सकते हैं मनुष्यों में। डॉक्टर सुमित, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मनुष्यों से जो बीमारियां फैल रही हैं पशुओं में, रिवर्स जूनोटिक जिसे कहते हैं, ये कितने खतरनाक हैं, पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यदि हम बात करें तो?
3: मनुष्यों से अगर कोई बीमारी रिवर्स जूनोसिस से जानवर में चली जाती है तो वायरस को एक नया होस्ट मिला है जिसमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी बात है कि वायरस उसके अंदर और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा और फिर और अधिक शक्तिशाली होकर वो वापस से मनुष्यों में लौट सकता है। मतलब वो एम्पलीफायर होस्ट की तरह काम करेंगे जो हमने देखा। तो इस तरह से क्या होता है कि अब जब ये अगले मनुष्य में प्रवेश करेंगे तो ये और खतरनाक होकर प्रवेश कर सकते हैं, म्यूटेशन के बाद हो सकते हैं। अपन बोलते हैं ना वायरस में म्यूटेशन हो गया, ऐसे ही हमने कोविड में देखा, कोरोना में देखा कि दूसरी लहर तीसरी लहर, तो वो उसका ही एग्जाम्पल था। कई बार क्या हुआ था कि ये जो तीसरी लहर खास तौर से डेनमार्क में आई थी तो वो कुछ जानवरों के थ्रू और वापस लौट के जब मनुष्यों में आई तो वो और खतरनाक हो गया था वायरस, तो ये एम्पलीफाई हो सकते हैं। तो इसमें जो अभी बात हुई सर्वेलेंस की, सर्वेलेंस यानी कि निगरानी, तो जानवरों की जो निगरानी है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, समय समय पर उनकी भी सैम्पलिंग होनी चाहिए और ह्यूमंस में भी सैम्पलिंग होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि वायरस में कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल जो इसका है वो अपना टाइफाइड फीवर भी है। जैसे टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसमें भी एनिमल रिजर्वायर काफ़ी होते हैं, तो ये वहाँ से ह्यूमंस में आया, ह्यूमंस से किसी पानी के स्रोत में चला गया क्योंकि मल के थ्रू ये पानी में चला जाता है, वहाँ से जानवर में गया और ज़्यादा स्ट्रांग होके आ गया, जानवरों में एंटीबायोटिक का प्रयोग हो रहा होता है तो वहाँ से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होके फिर वापस आता है मनुष्यों में और फिर किसी भी एंटीबायोटिक से इसका इलाज नहीं हो पाता, हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं बचती जो हम इसका इलाज कर पाए, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। हम मेडिकल से कई बार बिना सोचे समझे दवाई किसी और चीज़ के लिए खाते हैं लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक बीमारी है वो और खतरनाक रूप ले लेती है, ये भी देखने को मिला है।
1: डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से वो मनुष्य होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ज़्यादा खुले होते हैं इस तरह की बीमारियों के लिए और उन्हें किस तरह की सुरक्षा प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मनुष्यों में जैसे जो हमारा एज ग्रुप 5 साल से 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा जो है वो ज़्यादा रिस्क में रहता है, साथ में जो एल्डरली हमारे बुजुर्ग हैं 65 साल जो उससे ज़्यादा उम्र के वो रिस्क में, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सीरियस बीमारी पहले से कोई क्रोनिक बीमारी होती है जो उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। हमारी प्रेग्नेंट जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, वो रिस्क में रहती हैं और साथ में ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई दूसरी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, अगर कैंसर का इलाज चल रहा हो तो भी उसकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो इनको खतरा ज़्यादा रहता है, तो ये वो हैं जो कि कमज़ोर लोग हैं। अब इससे बचने के लिए वही जो मैंने बताया था कि हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर बहुत बढ़िया काम करता है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, उसके बाद अगर आप जानवर के पास जा रहे हैं तो ग्लव्स का उपयोग करें, अगर जानवर को आप टच कर रहे हैं किसी वजह से टच करना पड़े तो आप ग्लव्स का उपयोग करें, मास्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आप उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, और जैसे मैंने बताया था खाने में भाई अपने को अधपका भोजन नहीं करना है, दूध हमारा पाश्चराइज दूध ही लेना है, तो और साफ पानी मतलब हमारा क्लीन वाटर होना चाहिए और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और हाइजीन का प्रैक्टिस करके बचा जा सकता है इनसे।
1: जी जी जी, नियंत्रण और रोकथाम के बारे में बहुत कुछ बताया डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता साहब आपने। डॉक्टर नीलेश शाह, चलते चलते इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में रोकथाम और बचाव के उपाय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, इकोसिस्टम ऐसा कैसे क्रिएट किया जाए क्योंकि हम सभी इसी ग्लोब में रह रहे हैं, इसी पर्यावरण में रह रहे हैं तो अलग तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए जिससे कि मनुष्य भी रहें, जानवर भी रहें और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
2: पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, पब्लिक हाइजीन की बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और जो एक वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है इन बीमारियों से बचाव के लिए, खासकर रेबीज जो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। मतलब मैं थोड़ा सा रेबीज पर इस पर जोर देना चाहूँगा, रेबीज की वैक्सीन में कि अभी तक क्या हो रहा है कि जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता था तो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। एक भ्रांति ये थी कि रेबीज का अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो वो डॉग अगर बाइट कर ले तो फिर हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिले हैं कि रेबीज के वैक्सीनेशन के बाद भी उस डॉग में रेबीज की बीमारियां हुई हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का बाइट का केस है, भले ही वो डॉग वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, किसी मनुष्य को उसने काटा है तो मनुष्य को जो भी वैक्सीन के प्रॉपर डोज हैं वो लेना पड़ेंगे किसी भी मतलब एक्सपर्ट के परामर्श से, पहली बात। एक भ्रांति और थी पहले कि रेबीज जो है वो 3 माह से कम पप्स को या कैट को नहीं होता है, लेकिन ये भी गलत भ्रांति है। रेबीज बीमारी पशुओं में किसी भी एज में हो सकती है, 1 महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है। ये हमें ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी डॉग बाइट या कैट बाइट का केस है, भले ही उसकी एज कितनी हो, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि उसमें रेबीज होने की संभावना है, तो हमें जो सावधानियां रखनी है वो सावधानी रखना चाहिए।

0: इसी प्रकार से हम दूसरी बीमारियों का भी प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे तो बहुत हद तक इन बीमारियों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं।
1: जी, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, चूक का कहीं कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर सुमित रावत साहब, पर्यावरण के ऊपर खासकर आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे अंत में।
0: जी
1: पर्यावरण या एग्रीकल्चर की बात कर लें, कृषि की बात कर लें, ये
0: जी
1: कितना हमारे वन हेल्थ के विमर्श के केंद्र में है,
0: जी
1: खासकर जूनोटिक बीमारियों को देखते
0: जी
1: हुए।
0: आप देखेंगे कि कहीं की जो सॉइल हेल्थ होती है, यानी अभी हमारे सेव सॉइल के अभियान भी चल रहे हैं, तो सॉइल हेल्थ और जो एनवायरमेंटल हेल्थ होती है वो भी ह्यूमन हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारक है, डिटर्मिनेंट है। तो एक तो हम जो अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, एक ही जगह पे बहुत सारा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और ये सब हम डालते चले जा रहे हैं, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। एक्सेसिव माइनिंग जो हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो सॉइल हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बदल जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे बदल जाते हैं। हम वृक्षारोपण भी जो करते हैं तो सोच समझ के करें, हम कहीं ऐसे पेड़ ना लगा दें किसी जगह पर कि जो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में पाए जाते हों, और हम भारत में हमारे जो आम हैं और नीम हैं और जो बरगद हैं हम इनको रिप्लेस कर दें, क्योंकि कहीं
1: वाटर
0: ना
1: लेवल ना
0: कहीं
1: कम हो जाए कहीं।
0: हाँ वाटर लेवल ना कम हो जाए, प्लस कहीं ना कहीं ये जो पेड़ होते हैं जैसे नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, तो स्वास्थ्यवर्धक पेड़ हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे जो इकोसिस्टम को बचाने में है ये बहुत बड़ा रोल है। तो हम अगर इनको रिप्लेस कर देंगे ऑर्नामेंटल प्लांट से तो वो भी अपने आप में हमारे लिए एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो ये जो हमारे नेचुरल एक बैरियर है इसने भी हमको बचा के रखा हुआ है, तो इनका भी कहीं ना कहीं रोल है। ये शेल्टर की तरह काम करते हैं, तो अगर हम इनको हटा देंगे तो हमारे जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं इनका शेल्टर ख़त्म हो जाएगा, तो वो दूसरी जगह जाके मिक्स होंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमें
1: बहुत
0: देखनी
1: महत्वपूर्ण बात
0: पड़ेगी।
1: आपने कही, जो
0: जी
1: पशु पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, उनको उनके आवास में ही रहने दिया जाए, ऐसा ना हो कि जंगल शहर में चले आएं,
0: जी
1: या यूं कह लिया जाए कि जो शहर है वो जंगल में चला जाए। ज़्यादातर यही हो रहा है। डॉक्टर
0: जी
1: अमरनाथ गुप्ता, चलते चलते आपसे संक्षेप में कुछ परामर्श, जिससे हम मनुष्य को इस सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे से, मनुष्य के साथ साथ पूरे पर्यावरण को भी, पशु पक्षियों को भी बचा सकें।
2: जैसे अभी सुमित राव सर ने कहा कि हमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज इकोसिस्टम में करना ही नहीं है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के चक्कर में हमने जाकर के उनके निवास स्थान है जो हमारा जंगल ख़त्म कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जानवर कहाँ जाएगा? वो जंगल से आएगा, हमारा जो पेरी डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं उनसे कांटेक्ट में आएगा, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो नई नई बीमारी लेके आएगा। जंगल में जो जानवर हैं उनके पास जो बीमारियां हैं वो हमारे पास हो सकता ना हो रही हों, और फिर उन जानवरों को और इन जानवरों को जब आपस में कांटेक्ट होगा तो कुछ ऐसा नया वायरस बन सकता है जो कि और भयानक हो, और वो फिर बीमारी जब इंसान में आएगी तो हो सकता है वो किसी बड़ी पैंडेमिक भी हो सकती है। जैसा कि अभी हमने कोविड देखा, तो अगर इस तरह अंधाधुंध अगर हम ये काम करते जाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे हम बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएं।
1: जी, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आ सकती है, ख़तरनाक स्थिति पैदा हो सकती है,
2: जी
1: और
2: हाँ
1: कोई ऐसा वायरस ना पैदा हो जाए जो पूरी मानवता के लिए एक संकट का कारण बन जाए, भयानक महामारी के रूप में हमारे सामने आ जाए।
2: जी
1: बहुत अच्छी चर्चा हुई, और जूनोटिक बीमारियों के बहाने से हम पूरे पर्यावरण के बारे में, वन हेल्थ के बारे में आज चर्चा कर पाए। निश्चित रूप से जो जागरूकता का एक दिन है ये हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व जूनोटिक दिवस के रूप में, और निश्चित रूप से इस परिचर्चा के माध्यम से बहुत अच्छी बातें निकल करके सामने आई, और हमारे तमाम जो सुनने वाले हैं इस बीमारी के बारे में पहले से और ज़्यादा जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, और रोकथाम नियंत्रण के लिए सक्षम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर नीलेश शाह आपका, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग सागर से। डॉक्टर सुमित रावत साहब आपका, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं माइक्रो बायोलॉजी विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। और डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता साहब आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। आप तीनों ही मेहमान इस परिचर्चा में आए, शामिल हुए, लोगों को जागरूक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: धन्यवाद, आपका
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: यह कार्यक्रम वन हेल्थ एवं एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस परियोजना में मध्य प्रदेश शासन का पशुपालन एवं डेयरी विभाग नोडल विभाग के रूप में सहयोग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट GIZ के तकनीकी सहयोग से सागर जिले में संचालित किया जा रहा है।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GIZ नई दिल्ली।
5: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा विश्व जूनोसिस दिवस पर, ये परिचर्चा थी। आमंत्रित विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीलेश शाह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, HOD कम्युनिटी मेडिसिन से, और माइक्रोबायोलॉजी विभाग से थे डॉक्टर सुमित रावत।

सबसे पहले सुनते हैं शान और अलका याग्निक के स्वर में गोल्डी बहल का लिखा हुआ ये गीत। आदेश श्रीवास्तव ने इसे संगीत से संवारा और फिल्म का नाम बस इतना सा ख्वाब है

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो के स्वर में समीर का लिखा हुआ ये गीत। जतिन ललित ने इसे स्वरबद्ध किया है और फिल्म का नाम ढाई अक्षर प्रेम के

आइए अब आपको सुनवाते हैं चलते चलते फिल्म से ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक के स्वर में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ मनोज सक्सेना, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। आप तो जानते हैं, आपको अगर जीवन में सुखी रहना है तो मना स्थिति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि मन अगर मजबूत है तो आप हर लड़ाई लड़ सकते हैं, और मन अगर आपका हार गया तो फिर जीवन में निराशा हताशा आपको मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमें अपनी हर परिस्थिति में मन को मजबूत रखना है, स्वस्थ रखना है। इसी आशय से हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत करते हैं विभिन्न प्रकार के मनोरोगों पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। सर नमस्ते।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: सर, पिछला एपिसोड जो हमने बात की थी ध्यान पर, अटेंशन पर, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछ लिए हैं और कहा है कि साहब फोबिया जी, डर, ये भी क्या मनोरोग की निशानी है?
1: जी, फोबिक डिसऑर्डर एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर ही है, और इसमें क्या होता है कि सामान्य चीजों से डर नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक चीजों का डर होता है, और उनकी वजह से लोगों की कार्य क्षमता में कमी आती है, उन कॉन्फिडेंस में, या कई जगह आना जाना उनका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, और वो अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी को ऊंचाई का है, किसी को बंद कमरे का है, किसी को कीड़े मकोड़ों से बहुत ही, मतलब ऐसा है कि उसे बीमारी तब बोलते हैं कि वो बार बार हो रहा है और इतना अति हो रहा है कि मतलब आप घर में हैं, आप छिपकली की वजह से आप किसी कमरे में जाते ही नहीं हैं, या किसी पर्टिकुलर बाथरूम में नहीं जाते हैं, या फिर आप लिफ्ट कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, या छत पे कभी नहीं जा रहे हैं, या ट्रेन या बस में नहीं जा रहे हैं, या भीड़ वाले मार्केट में नहीं जा रहे हैं, तो इतना हाँ कि इतना ज़्यादा है कि ब्लड देखते ही आप बेहोश हो जाते हैं। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा उसकी रिएक्शन होती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिससे कि आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है, धड़कने तेज हो जाती हैं, सांस फूलने लगती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब गए, कैसी भी सिचुएशन से निकले, और आप गलती भी कर जाते हैं कई बार हड़बड़ी में।
0: ये
1: तो हाँ, तो ये फोबिक डिसऑर्डर के लक्षण, और ये बार बार हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है, तब हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, और इसमें दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: सर, बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, वो डर रहे हैं तो समझ में आता है
1: जी,
0: क्योंकि ज्ञान तो खैर ज्ञान की कमी होती है, और पहले भी जो माएँ थीं अपने बच्चों को डराती थीं
1: जी,
0: और उनको डरा करके अपनी बात मनवाती थीं कि झोली वाला बाबा आ जाएगा, खाना खा लो जल्दी से, शैतानी नहीं करना। अब ये चीज़ें खत्म हो गई, हमारे जो लोग हैं जानने लगे हैं कि अगर हम बच्चों को इस तरह से डराएंगे तो फिर ये डर उनके घर कर
1: जाएगा। गलत चीज़ थी,
0: ये गलत चीज़ थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे तो ठीक हैं, बड़े भी जो वो भी डरने लगे हैं, उनको डर लगता है, टीवी देखी, कोई न्यूज़ देखा, घबरा गए, हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ये परिस्थिति है, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, अब तो गाड़ी नहीं चलाना मेरे को।
1: ये हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा सोच के उस चीज़ को नेगेटिवली ज़्यादा लेना या अपने ऊपर ले लेना, हर छोटी बड़ी बात पे चिंता ज़्यादा करना, तो वो एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ सिम्टम होता है। तो जिसमें जैसे कहीं जाना है तो ट्रेन 5 बजे है तो रात भर से ही टेंशन ले रखी कहीं छूट ना जाए, ना छूट जाओ, या फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, कैसे होगा, फला काम कैसे होगा, छोटी छोटी चीज़ों की भी ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन चिंता करने लगे, और उसकी वजह से आप काम को अवॉइड करें या तो, या फिर आप सोना खाना पीना ये सब में और या वर्क फंक्शन में आपका डिस्टरबेंस आ जाए। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। फोबिक अलग था, ये चिंताएं जो छोटी बड़ी चीज़ों की, हर चीज़ की आप चिंता कर रहे हैं, वो तो वो एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, थोड़ा सीरियस है, लेकिन इलाज है, दोनों ही का इलाज है, और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आती है मेडिसिन से और काउंसलिंग से।
0: अगर ये डर बढ़ता चला गया, आपने इलाज नहीं कराया, तो क्या होगा?
1: देखिए, फिर आप और भी जो मानसिक रोग हैं उससे जुड़ते जाएंगे, जैसे डिप्रेशन आ सकता है, या आपका डर जो है जो एक साधारण चीज़ों का है, तो फिर आप पक्का भरोसा करने लगेंगे और उस डर को किसी से जोड़ के साइकोटिक सिम्टम आ सकते हैं कि आप शक करने लगेंगे कि कोई करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सीरियस हो जाने पर साइकोटिक सिम्टम आ सकते हैं। फिर आप ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, हताश इतने हो जाएंगे कि आप सुसाइड अटेम्प्ट वाली स्थिति भी हमने देखी है, कई लोग इतने कि अब आपसे नहीं हो ही नहीं पाएगा, इतने नेगेटिव हो जाते।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिरदर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9406925768। हमीदिया हॉस्पिटल के सामने 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स DIG बंगला चौराहा भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
0: अब जैसे आपने कहा कि उसको बेचैनी और घबराहट भी होने लगती है, ये डर रहा, चिंता रही, फोबिया रहा, उसके परिणाम स्वरूप आपको बेचैनी और घबराहट आ गई। ये घबराहट जो है स्थाई अगर घर बना ले तो निश्चित ही आपका मन आंदोलित होगा, दिमाग आपका जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये इस परिणाम तक आने के लिए रोकना कैसे संभव है?
1: देखिए, एक तो सही समय पे पहचान जरूरी है कि देखिए घर वाले भी समझ सकते हैं, सबको पता रहता है कि ये जरूरत से एक नॉर्मल रेंज होती है कि हाँ ये यहाँ तक ठीक है क्योंकि काम धंधा रुका नहीं है, रिलेशंस खराब नहीं हो।
0: सही बात।
1: डिसऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मल ऑर्डर है वो खराब हो रहा है। आप नॉर्मल दैनिक कार्य हैं, दैनिक बातचीत हैं, वो कर पा रहे हैं। अब इतना घबराया या बेचैन रहेगा आदमी, डरा हुआ रहेगा तो काम धंधा नहीं कर पाएगा, तो ये तो डिसऑर्डर है, इसका इलाज होना चाहिए। लगातार धड़कने चल रही हैं, पसीना बह रहा है, डर बना हुआ है, किसी को पकड़ के बैठे हो, तो इसका सिंपल सा चीज है कि उतना होने से पहले ही आप ले आए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, और दवाइयां भी कम हो जाती हैं समय के साथ। और ये लाइलाज बीमारियां नहीं है, इनका इलाज है। और इन बीमारियों में जितना सीरियसनेस है उस हिसाब से साल दो साल में दवाई बंद हो जाती है।
0: मतलब हम इसको आम भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे शरीर में सर्दी और जुकाम होते हैं वैसे ही छोटे छोटे विकार हैं।
1: मानसिक रोग के हिसाब से देखे जाए तो ये बड़ी बीमारियां नहीं है, लेकिन लोग इतना देर से आते हैं कि वो एक के साथ दो और साथ लड़के लेते हैं, है ना, डायग्नोसिस जोड़ते हुए आते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, यदि वो इलाज समय पे नहीं करा है
0: जी,
1: उसके हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है, नसों में प्रॉब्लम आने लगती, तब आता है तो बहुत देर हो जाती है।
0: वाकई सर आपका बिल्कुल सच कहना है
1: जी,
0: क्योंकि हमें थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम सिरदर्द होगा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें मानसिक बीमारी अगर हमें घर कर गई है लेकिन उसको हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं,
1: उससे बहुत नुकसान
0: बहुत ज्यादा हो जाता है। हम जैसे आज बात कर रहे हैं कि चिंता, फिक्र, आपकी डर है, भय है, ये तो सब ठीक है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, उनको कोई नया काम करने में बहुत ज्यादा झिझक आती है, लोगों से, नए लोगों से मिलने में बहुत झिझक आती है। इवन मैंने देखा है कि उनको दो या तीन बार ट्रेन बदल के कहीं यात्रा करने जाना है तो कोई अड़चन लगती है, डायरेक्ट वाली दे दो तो चले आएंगे। इन सारी परिस्थितियों से जूझना नहीं चाहते हैं लोग, इनको आप क्या मानेंगे, मनोरोगी मानेंगे या ये सहमे ही हैं, क्या है?
1: देखिए, एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लोगों से इंटरेक्ट करने में, सिचुएशन से डील करने में, जैसे स्टेज पे जाने में, भीड़ में जाने में, सब पब्लिक फंक्शन में बात करने में दिक्कत होती है, तो वो सोशल एंजाइटी के सिम्टम ऐसे लोगों में होते हैं जो कि कम उम्र से भी शुरू हो सकते हैं। फिर ऐसे लोगों को काम में, इंटरव्यू देने में, नए लोगों से मिलने में,
0: हर चीज में डर,
1: हाँ, तो ये एक बीमारी है एक तरह की, तो उसका इलाज है, काउंसलिंग है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि धीरे धीरे आदमी, नहीं तो उसकी देखिए उसकी प्रोग्रेस कितनी खराब हो जाती है। तो ये समस्याएं हैं, इन्हें नजरअंदाज ना करें, एक कहने को छोटी समस्या, अरे हो जाएगा समय के साथ, नहीं, इसको जांच कराएं, उसके बारे में पता करें कि बीमारी को बढ़ने से रोकें।
0: बिल्कुल सच कहा सर आपने, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर वो गवा देते हैं। मित्रों, आपके अंदर भी अगर यह कमी है या आपके किसी परिवार के साथ ऐसी स्थिति है तो आप सीधा संपर्क कीजिए, बहुत आसान इलाज है और आपको उसके प्रति जो भी काउंसलिंग होगी वह भी आपको मिलेगी। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। हमारा नंबर आप ध्यान से नोट कीजिए, 9406925768। नंबर फिर सुन लें, 9406925768। इस नंबर पर हम आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंडओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किनबितवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेजा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डूढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य और वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फ़ोन करें लोकगीत सुनें।

0: जय शेखर भैया, अपन और लेके आ गए हैं अपने श्रोता भैया बहनों को चहेतो कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने, तो स्वीकार करो शशि और
1: जय शेखर की राम राम, राम। राम। और लेते हैं शशि बिन्ना जो पहलो फोन। हेलो।
2: हेलो सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
2: फोन करें लोकगीत सुने।
1: बिल्कुल भैया, अपना नाम बता दो।
2: हम अनिल जैन देवरी से।
1: अच्छा अनिल भैया, क्या कर रहे हो देवरी में?
2: हमारे साहब तबियत ठीक नहीं है तो पड़े हैं घर में, एक पा दुख रहा है सर, अब इंदौर से दवाई करा के आए हैं।
1: हाँ।
2: दुकान लगो सर।
1: अच्छा अच्छा, पाँव काय पिरा रहा है?
2: अरे सर एक नस तड़क रही है बहुत, जम गया बिहार विंडो में रही, एक महीना ठीक होगा और फिर प्राण लगो सर।
1: तो भैया ऐसे में जब घर में परे हो तो आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगा थे आप?
2: पूरे हम तो सुनते ही है साहब, सबका जी सुना था आपकी।
1: चलो बहुत ही अच्छी बात है, तो अटका पूछ लें आपसे।
2: बोलो सर, बने रुका बताइए सर।
1: हाँ हो
2: जी,
1: बोले ना हेरे सन्ना रे बे।
2: अच्छा
1: हाँ
2: जी, दरवाजी है सर?
1: नहीं भैया, बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा दे बे?
2: सर लोकगीत सुनवाइए हमें रामचरण यादव को।
1: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं?
0: नमस्ते दीदी।
1: हाँ
0: जी भैया,
1: नमस्ते।
0: यहाँ से निमित श्रोता ग्राम कनेरा निकट से बसंत कुर्मी दीदी।
1: हाँ बसंत भैया, कौन से गांव से बताए?
0: कनेरा से अभी तो है तो अर्जुनी में मामा के यहाँ शादी में थे अभी, तो हमें आज आकाशवाणी किया था कि हमने की बहुत दिन हो गए चित्रकूट से अभी आए हैं गांव।
1: अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं ना आप चित्रकूट में?
0: जी दीदी।
1: चलो बढ़िया है भैया। कैसी का चल रही है आपकी पढ़ाई?
0: बस दीदी, इस बार सेकेंड ईयर कर रहे हैं, बीपीए तबला सीख रहे हैं दीदी वहीं पे, तो बस उसी के कोर्स की तैयारी है दीदी। बस क्या कहते हैं, अगस्त में हम लोगों को बहुना है वहीं पे, जबकि फीस भरी जाती है, तो बस अगस्त तक से खुलेगी अब हम लोगों की स्कूल।
1: अच्छा, चल अच्छी बात है भैया। और बताओ।
0: बस दीदी, आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, फोन करेगी सुने, फोन करे लोग सुनो, जब भी टाइम मिलता है। तो हमारे दोस्त भी वहीं के हैं, मतलब यूपी के हैं मैम, तो वहाँ पे तो ज्यादा, तो मैम सभी हम लोग साथ में न्यूज वन या एप के माध्यम से सुनते हैं दीदी।
1: सुन लेते हो सभी
0: जी
1: प्रोग्राम?
0: दीदी
1: चलो
0: जी दीदी,
1: बढ़िया।
0: खासकर हम फोन करे लोग सुने, फोन करेगी सुने, बाल सभा, और एक वो आता था वो मैम गागर में सागर। जी मैम, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं दीदी।
1: चलो अच्छी बात है भैया। जा तो कि देखो आप
0: जी
1: पढ़ाई करत करत है और रेडियो से आपको इतने स्नेह है कि आप सारे कार्यक्रम सुनाई लेते हो। और बसंत भैया, अब हमें आप बता दो कि आपको कौन से लोकगीत सुनने हैं।
0: अब तो दीदी कोई अच्छो वर्षा के हिसाब से कोई गीत सुनवा दियो आप दीदी। वो सुना दियो जयंत विश्वकर्मा को शेरो। हाँ वो है शेरो तो शेरो रे। और दीदी जो न मिले तो फिर चंद्रभूषण पाठक को कोई भी सुनवा दियो। जी
1: और भैया,
0: दीदी
1: अब हम आपसे अटका पूछ रहे हैं आज को।
0: जी दीदी।
1: हाँ तो अटका कह रहा है, बोले ना हेरे सन्नानो रेवे।
0: बोले न हीरे सन्नानो रेवे
1: हाँ
0: दीदी का सुसंकेत
1: भैया संकेत।

0: आपके खेत वगैरह थे ही?
1: जी जी जी।
0: तो बस खेत से संबंधित है?
1: बोले नहीं रे स्पन्ना नोरी पे। दीदी वो तो नहीं मेंद रही?
0: नहीं नहीं भैया, वे तो हेरत भी है बोलत भी है।
1: बखर तो नहीं दीदी को चलती है खेतों में?
0: नहीं नहीं।
1: तो फिर दीदी हम पे नहीं बंदाओ।
0: चलो कोई बात नहीं भैया, और आपने जयंत विश्वकर्मा की फरमाइश करी है, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा को गाओ भव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: ग्राम लखरौनी से रविशंकर सुमन बात कर रहे सर।
0: लखरौनी भैया कहाँ पे पड़ा था अपनो?
1: सर दमोह जिला तहसील पथरिया।
0: तो भैया लखनौनी में कहाँ चल रहे हो अपनो?
1: सर मैं किराने की शॉप है मेरी।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया किराने को सामान आप कहाँ से ले आउट हो?
1: सर पथरिया से भी लाते हैं।
0: हाँ।
1: और कभी कभार दमोह भी चले जाते हैं सर।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया आपके किराने की दुकान की खासियत क्या है, यानी गांव वाले का के आपकी दुकान पे आए, ये किराने आप क्या करत हो?
1: सर स्पेशली तो वैसा मसाले वगैरह है सब अपने।
0: हाँ हाँ।
1: नॉर्मली जैसे अपन पिसवा के माने प्योर मिर्ची है, धना है, तीन चीजों को अपन मतलब सेलिंग करते हैं सर।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है भैया। अब हमें बता दो आप
1: कि
0: अटका पूछे पहल के लोकगीत पूछ ले रहे?
1: सर जो आप बोले सर।
0: तो हम अटका पूछे ले रहे हैं। अटका कह रहा है कि बोले ना हेरे सन्ना नो रेबे।
1: बोले ना हेरे।
0: हाँ।
1: सन्ना नो रेबे।
0: हाँ
1: सर कुछ संकेत?
0: संकेत भैया खेतों की चीज है।
1: खेतों की चीज।
0: हाँ।
1: बोले ना हेरे
0: सन्ना नो
1: रेबे। सर नहीं बता पा रहे सर।
0: नहीं बता पा रहे
1: जी।
0: चलो कोई बात नहीं भैया, तो बता दो फरमाइश का ले आए हो आप?
1: फरमाइश सर मुझे सुनना है सर पुरुषोत्तम।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया, और सुन लो अपनी फरमाइश पे जो लोकगीत।

0: हाँ भैया
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं आप?
1: हम बोला सतराजू डेरन से, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से।
0: अच्छा भैया, और आपको नाम कहाँ है?
1: विपिन कुमार।
0: हाँ भैया बताओ अपने बारे में, क्या चल रहा है आजकल काम काज आपको?
1: काम का सर ये उठाई करते हैं, यही कारीगरी।
0: अच्छा, और बताओ भैया।
1: बारिश भाई नहीं, खेती वेती है अभी जो बखराई हो गई, जुताई सबरी,
0: हाँ,
1: पानी अभी गिरा नहीं है।
0: अच्छा कौन सी फसल लेने हैं?
1: फसल अब बारिश होगी, बाजरा बबेगी, अरहर बबेगी,
0: बाजरा और
1: अरहर।
0: अच्छा चलो अच्छी बात है भैया। जैसे जो आप खेती बाड़ी कर रहे थे, तो आप अपने आधार पर कर रहे थे कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कर रहे थे?
1: नहीं सलाह से करते हैंगे, यही सुनते रहते, कभी पहले रेट भी रखते थे तो वो सुनते थे, ग्राम सभा आता है तो यही बताते रहते हैं, तो यही सुनते थे।
0: हाँ वह भी आओ थे भैया किसान वाणी कार्यक्रम।
1: अब आता है लेकिन रेट भी नहीं है हमारे पास। अब
0: अरे फिर
1: मोबाइल पे सुनते हैं जब कार्यक्रम आओ।
0: हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप मोबाइल में सुन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, रेडियो नहीं है तो, है ना? चलो ठीक है भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछ रहे हैं।
1: हाँ पूछो दीदी।
0: हाँ अटका कह रहा है, बोले ना हेरे सन्नानो रेवे।
1: सांप
0: नहीं नहीं सांप नहीं है,
1: बादलों है,
0: नहीं बादल भी नहीं है भैया। बोले ना हेरे सन्नानो रेवे,
1: धुआं।
0: नहीं खेती से संबंधित है भैया।
1: अच्छा खेती से संबंध है, पेड़ वो पेड़े
0: नहीं भैया पेड़ भी नहीं है।
1: नहीं आ रही समझ में, बाजरा आजरा तो नहीं है।
0: नहीं, अब आप हमें लोकगीत बता दे कौन सा सुनने हैं।
1: सिया भाई जाटा।
0: चलो ठीक है भैया, और अब आप सुने सियाबाई जाटव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: भैया, फोन करे लोक गीत सुनने में स्वागत है आपको। तो
1: ग्राम कने रानी खर्च प्यारे लाल प्रजापति
0: भैया नाव प्यारे लाल है आपको,
1: जी। सर
0: तो भैया क्या कर रहे हो आप उधर?
1: सर बैठे थे, कछु नहीं कराते हैं जी। सुनत रहे थे या पे मोबाइल
0: हाँ
1: पे ही सुना थे अपन, तो लीड लगा ली थे वहां चला थे। अच्छो सुनत रहे थे।
0: अच्छा, तो भैया कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है
1: सबसे
0: आकाशवाणी
1: अच्छा
0: को?
1: लग रहा किसान वाणी
0: अच्छा, तो हमें कारण भी बता दो भैया कि मैं सब का अच्छा लगा था आपके लाने।
1: सर। किसान वाणी में बताते हैं मुझकी अच्छी बात है, जैसे बीज उपचार करवे की बातें बताते हैं,
0: हाँ
1: और पेड़ पौधा जैसे कछु रोग लग रहा हो तो उनके लाने दवाई बताते हैं,
0: हाँ
1: और देसी खाद की बताते हैं, देसी खाद डालो जो खाद न डालो ज्यादा,
0: हाँ
1: ये बातें अच्छी लगाते हैं।
0: सही कह रहे भैया, जो बहुउपयोगी कार्यक्रम है, मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान सब मिला था भैया ये कार्यक्रम में।
1: जी सर
0: तो भैया सब काम धाम छोड़ छाड़ के फ्री हो के अपन किसान वाणी सुनने बैठ जाते हो आप?
1: जी
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। खेतों के हालचाल बताओ कछु भैया।
1: सर, अब धान की बोनी हो रही है और मक्का की हो रही, सोयाबीन की नहीं भैया भाई। अब पानी गिर गया है आज,
0: हाँ,
1: आप होंगे कल परसों से।
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है भैया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं खेतों से जुड़ो भाव एक अटका।
1: जी सर
0: बोले ना हेरे सन्नानो रहवे।
1: जूता
0: नहीं भैया
1: जूता चप्पल भी बोलत भी नहीं सर
0: नहीं,
1: थोड़े
0: वे तो
1: से
0: चट्टे चट्टे बोला थे चप्पलें तो, और जूता भी चर चू बोला थे।
1: वो तो ना ही मटका पानी भर के ले जाता पान,
0: नहीं मटका वो मैं रखो तो जात है, मैं पानी भर भी नहीं रखो जात, कई बार रख देते हैं।
1: वो चका रहे थे नीचे तो
0: नेचे चका नहीं रहे थे, ऊपर मटका रहे थे।
1: नहीं समझ में नहीं आ रही
0: कोई
1: सर।
0: बात नहीं भैया, बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं?
1: मगन लाल प्रजापति को लोगी सुनवा दीजिए।
0: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे मगन लाल प्रजापति को गाओ भाव जो लोकगीत।
2: हाय रे।

0: हाँ हेलो,
1: हाँ हेलो भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं?
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते भैया।
0: हम जमुनिया से बोल रहे मैडम, देवेंद्र
1: हाँ जमुनिया से बोल रहे हैं भैया, अपना नाम बताओ।
0: कुमार अहिरवार, जिला विदिशा मैडम।
1: अच्छा देवेंद्र भैया बोल रहे हैं जमुनिया से, तो देवेंद्र भैया को हम
0: जी
1: खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम, फोन कर रहे हैं लोकगीत सुनने में।
0: मैडम,
1: हाँ और बताओ भैया।

0: अपने बारे में, क्या काम कर रहे हैं आजकल?
1: मैडम खेती किसानी काम करती हैं।
0: तो क्या चल रहा हो आजकल खेतों में?
1: खेतों में का है मैडम जी, बखन्नी बोनी हो चुकी है। हाँ, पानी के में पानी थोड़ा सुबेरे गिरा था।
0: हाँ हाँ
1: जी मैडम।
0: तो काय की बोनी करी?
1: थोड़ा भी नो औरते भाई मैडम।
0: अच्छा अच्छा
1: तो बो देते हैं थोड़ा सा और।
0: अच्छा, तो मक्का बो चुके हो?
1: हाँ मक्का बो देते हैं और का कद्दू है, लौकी है, ये भी लगा लेते हैं।
0: तो जैसे मक्का आपने बो तो कितने बड़े बड़े हो गए पेड़? आ गए का भुट्टा में?
1: अभी नहीं आए, बुझा रही है, हो रही है मैडम।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: चलो ठीक है भैया। कहा कि बहुत से किसान भैया रहे तो जल्दी से बो देते हैं, सो जैसे ही बरसात आउ थे सो लो जगह जगह ठेलों पे है, दुकानों पे है, घरों में है मक्का के भुट्टा भुजन लगाते हैं और बड़े चाव से खबन लगाते हैं भी।
1: जी मैडम।
0: चलो ठीक है भैया, अब हम आपसे आज को अटका पूछे।
1: जी पूछो मैडम।
0: हाँ अटका कह रहा हूँ है, बोले न हेरे सन्नानो रेवे।
1: बोले न हेरे
0: सन्नानो रेवे,
1: थोड़ा संकेत मिलेगा मैडम?
0: हाँ भैया खेती बाड़ी से संबंधित है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले न क्या नहीं यार, बिच्छू तो नहीं है?
0: बिच्छू नहीं है?
1: नहीं यार।
0: चलो कोई बात नहीं भैया, अब हमें लोकगीत बता दो आप, आपको कौन सा सुनने हैं?
1: लोकगीत मैडम जी शकुंतला राजपूत को कौन अच्छा विवाह गाड़ी सुनवाने ना।
0: ठीक है भैया, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला राजपूत को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: सर ग्राम पथरिया हाट से यशवंत अहिरवार।
0: यशवंत अहिरवार
1: जी सर।
0: पथरिया हाट से या पथरिया जाट से?
1: पथरिया हाट।
0: अच्छा अच्छा भैया, जब पथरिया हाट आपकी कहाँ पे पड़ा थे?
1: सर नरियाल जी के पास।
0: हाँ हाँ हाँ, राहतगढ़ जात समय भी मिला था भैया।
1: जी सर।
0: भैया काम का करत हो आप?
1: सर पढ़ाई करत है।
0: कौन सी क्लास में?
1: सर अभी कक्षा दसवीं पढ़ रहे सर।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो भैया का उद्देश्य बना लो है आपने?
1: सर उद्देश्य हमें कुछ नहीं बना सर, अभी हमसे ब्रेजिपी की पढ़ाई कर रहा सर, ब्रेज सीख गया।
0: अच्छा अच्छा भैया, तो कहाँ जाते हो भैया स्कूल में?
1: अभी सर यहीं जाते हैं।
0: कहाँ पे?
1: हमारी दसवीं क्लास में।
0: तो ब्रेल लिपि में पढ़ाई होते होते?
1: ब्रेल लिपि में पढ़ाई होते, हम ब्लाइंड लोगों के टीचर बनना चाहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा काम है भैया, बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो मुसीबत उठाई है, आप सोच रहे हो कि आप उन मुसीबतों से दूसरों को बचाओ।
1: जी।
0: बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया स्कूल कहाँ पे है आपकी?
1: सर छठवा मील पे।
0: अच्छा भैया, अच्छी बात आपने बताई कि आपके पास ही है स्कूल। तो
1: जी सर, सर जन्म जाते हैं।
0: और आप खूब खुश रहो और कोई भी दिमाग में बात ना ले आओ, सब अच्छी ले आओ कि आपको एक दिन टीचर जरूर बनने हैं। और भैया आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे टीचर बनो।
1: जी सर।
0: और हम पूछ रहे हैं आपसे अटका।
1: जी सर।
0: अटका कह रहे हैं कि बोले ना हेरे सन्ना नो रेवे।
1: सर चप्पल तो
0: नहीं? नहीं भैया।
1: सर जूता?
0: जूता भी नहीं भैया।
1: संगीत तो नहीं?
0: संगीत भी नहीं भैया, संगीत तो खूब बोलत है।
1: संकेत दियो सर।
0: संकेत भैया जो खेतों में रेत है जा चीज।
1: खेतों में रेत सर?
0: हाँ हमेशा।
1: सर पुतला तो नहीं सर?
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया, वो का कहते हो आप पुतला को?
1: बिजू का।
0: तो बिजू का आपने छू के देखो है का? आपको कैसे पता चलो के खेतों में बिजू का रेत है?
1: सर पहले एक बार छू के देखो तो।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, बता दो लोकगीत कौन सा सुनवाए?
1: सर उर्मिला पांडे को सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: और जयशेखर भैया ये लोकगीत के संगे अपनो कार्यक्रम चलो समाप्ति की तरफ।
1: मनु बिन्ना कार्यक्रम समाप्ति की तरफ तो चलो है, आज को अटका भैया ऐसो रहो के ये कई श्रोता बता पाए वो भी अखीर में और अपन ने बहुत ज्यादा उनको दो संकेत।
0: बिल्कुल भैया, और भैया अटका हतो आज को बोले ना हेरे सन्नानु रेबे,
1: तो हमें समझा दो जो कहा है।
0: जयशेखर भैया बिल्कुल सरल अटका है और अपन ने संकेत भी दो कि खेती बाड़ी से संबंधित है।
1: हाँ, हाँ।
0: इमें जे ही है जो अपने खेत खलिहान के अपने किसान भैया रहे थे, सुबह एक बिजू का बनाऊ थे खेत
1: अच्छा,
0: में तो मटका बंधा देते हैं और पुरानी शर्ट टी शर्ट वगैरह
1: हाँ,
0: पहना
1: हाँ,
0: देते हैं, कभी तो साड़ी भी उड़ा देते हैं,
1: हाँ,
0: सो डंडिया
1: हाँ,
0: लगा देते हैं,
1: हाँ,
0: सुबह हाथ पसारे ठाड़े रहते हैं, सो ना तो देखो उन्हें बोलने हैं और ना हेरने हैं, मगर जो छोटे मोटे जानवर हैं पक्षी हैं जे सब डरत रहते हैं कि कोऊ ठाड़ो है।
1: सही,
0: तो इको उत्तर है भैया बिजू का।
1: बहुत ही अच्छी बात है।
0: जयशेखर भैया जैसे कि अपन हमेशा अपने श्रोता भैया हरों से कहते रहते हैं कि आप और पारंपरिक अटका हमारे पास लिख के भेजो, तो कैसे लिख के भेजे बता दे मैं।

0: व्हाट्सएप नंबर।
1: बिल्कुल शशि बिन्ना, मोबाइल नंबर है जोन पे आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं 9770432297। एक हो हिंदी में भी बोले दे रहे हैं 9770432297। अच्छा भैया, ये में अपन को ऊपर लिख देने हैं अटका, और आप चिट्ठिया लिख के भेजो तो उसमें भी अपन को अटका लिखने हैं। तो चिट्ठिया के लाने हम पतो बताए दे रहे हैं,
0: बिल्कुल जैसे
1: सबसे ऊपर लिख दो अटका, फिर लिख दो द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश।
0: तो जयशेखर भैया, आपने देखो अपने श्रोता भैया बहनों को व्हाट्सएप नंबर बता दो है मोबाइल को, और चिट्ठिया पतिया लिखवे के लाने पता भी बता दो है। तो हमें आशा है कि अपने जो भी श्रोता भैया बहने हैं अपने पास भी बढ़िया बढ़िया से अटका लिख के भेज दे। और जयशेखर भैया, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलो देवेश पांडे से, और प्रस्तुति है जयशेखर की। अब दो आज्ञा शशि और
1: जयशेखर को
0: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रही हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है 11:30 to 11:30 तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी सागर है, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
3: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
3: जी धन्यवाद।

0: धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
0: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
0: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं।
1: जी
0: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया
1: जी,
0: तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है, कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।

0: इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम

0: काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं,
1: जी
0: 8-44-844-0632, 8-44-844-0632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं।
1: जी
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: हेलो माँ। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
6: बेटा, अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
5: News on AIR?
6: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
5: अरे वाह माँ, कमाल है।
3: News on AIR।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.6 MHz पर 11:30 होने को है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
3: रात जी आ रही, दिल अंधेरा है, तू जो सजल नहीं, मेरा है, मेरा है रात।
1: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
4: अनमोल यादें,
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
4: अनमोल यादें,
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: गणेश हेगड़े की आवाज़ में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ़ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरणदीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से 1 दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज़ में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

0: चलू लचक लचक के
1: आहे,
0: जरा मटक मटक के
1: आहे,
0: लट झटक झटक के
1: आहे।
0: चल केड़ी मीड़ी,
1: चल अजी टप्पा,
0: चल पोड़ी।

0: बिक जाए हल।
1: मैं क्या सोच के,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के,

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
3: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज़ में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर, मन्ना डे और तलत महमूद की आवाज़ों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना। कैफी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें। कैफी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

हंसते जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें, कैफ़े आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे। और आप अपनी बातें भी हम तक पहुँचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहाँ पर आप को सारी पोस्ट मिल जाएंगी और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की उन सभी की पोस्ट भी आपको वहाँ मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहाँ मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और जो साथी फेसबुक पर ही हैं जिनका अकाउंट है वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है क्योंकि रुकना नहीं चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा। वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहाँ कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूँ लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोराजी की ओर चल पड़ा हूँ। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना कभी अलविदा न कहना ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है या आपको किसने चलना सिखाया ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर। बताना है किस फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफ़े आज़मी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही। और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे ज़रूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख को महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है। संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो श्लोक की वास्तविकता है। बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है। जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहाँ कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं। कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारे एक और साथी का कहना है, चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। इसे कर्मयोग, काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज़ में गीत, कौन से फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ़ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होगी तय, चलते चलते तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहाँ रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नज़ारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले, हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वहीं हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पाँव की खूबसूरती देखना भी बहुत ज़रूरत है, खूबसूरती से ज़्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पाँव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहाँ, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज़ देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफ़र के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफ़र बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज़्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें समय ना बीते और बातें चलती रहें। तो हमें बताइए कौन है वैसा व्यक्ति, और ये भी बताइए कि किसकी आवाज़ में ये गीत सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारी इबारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियाँ किसी कार्यक्रम में उसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज़्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को, और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हों तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उत्तरार्ध में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिटाएं, ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊँचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज़्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के

ये कह रहे हैं मतलब छोटी हाइट जिनके उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताज़ी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि एक गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज़ में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहां पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफ़र चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफ़र बन जाता है। वैसे हमारे साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी। वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हुई गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफ़र मिला वो जीवन में हम सफ़र बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक 5 तो कम से कम चलते ही हैं। और एक साथी कहने कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाज़त दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफ़र में रखती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरे बचपन से हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देखकर आनंद आया। वहीं हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चामुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊँचा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो

तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं। एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, तो मैंने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहाँ लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया? हमारे चलते बोलते रहने के तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़ कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं। इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए हैं। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: país.
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे। मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार।

धमाल, थोड़ी चली जाए, मारना दे टंक, नजर कोई हाल।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल

0: पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे, और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरेघाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है।

0: मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार की आवाज़ में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में। ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
2: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
2: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली का। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज़ से दीपा की आवाज़ से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार
1: है? बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहाँ चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
2: बिल्कुल है ना, बहुत जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसात का, तो ज़्यादा ठीक है
1: जी।
2: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़े दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो, ऐसी हाल
1: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
1: कैसे
2: तो बनेगा,
1: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी
2: होगी बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना,
1: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना इस मौसम में ऐसी कुछ चीज़ें चटपटी और कुछ तली भुनी चीज़ों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए,
2: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे, अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
1: जी
2: में कहानी का दिन है, तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
1: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
2: जी।
1: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने लगी
2: है कि भाई अब बजट बनाए, हाँ, खर्चा
1: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
2: कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ,
1: हाँ
2: अभी नहीं,
1: सही बात।
2: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है। और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे।
0: सब होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें, आज इस कहानी की पहली कड़ी।
4: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई, तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रामदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
5: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
4: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद्दो खाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। रामदुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
5: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
4: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना मजबूत।
2: देखिए कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
4: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
5: हाँ तरक्की नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आज की गनीमत है।
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से। ₹500 रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। ₹150 माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना।
5: वो तो है भाई।
2: ₹350 बेदाग घर दे देते हैं और उसमें ₹100 मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते।
4: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
5: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, भला बताओ जरा। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं
4: हा? राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहां गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
5: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला। ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
5: वो तो है भाई।
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जवान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
5: सही कहती हूँ।
4: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
5: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
4: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
5: तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे। हाँ
2: 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
5: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
4: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
5: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
4: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
0: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
1: बिल्कुल।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पर खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियों, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसा अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख के, ये भी करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर

0: दीपा, हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती जो हम कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल,
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोलें कि हमें थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा, देखो पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो हैं दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहाँ हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये ख़रीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए।

0: सर रुक जाइए, हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना वो हम बिल्कुल
1: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे ज़रूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
0: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा, माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है?
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में 3 मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर्सत उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी से सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के, कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: हैं, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है,

0: इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी। तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएँ इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो हैं वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें, 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए, अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहत नवा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिस

0: के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है पीसीओएस।
0: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
1: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
0: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इंबैलेंस?
1: पीसीओडी एक हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
0: जी।
1: ये जो डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंज डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
0: जी।
1: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
0: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
1: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
0: जी।
1: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
0: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
1: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
0: मेडिटेशन,
1: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
0: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: अच्छा, एक पैर का नगमा।
0: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि PCOD यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है, और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है।

0: तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है। उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या
1: हाँ,
0: उस
1: वो
0: समय?
1: थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजॉल, और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफिशियंसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है। तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: USG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
0: जी तो
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
0: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
0: जी तो एक गाना और सुने, आपकी पसंद का
1: अच्छा,
0: कौन सा?
1: अजीब दास्ता।
0: अजीब दास्ता है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है
0: जी,
1: ऐसा मुझे लगता है
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे
0: जी।
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
0: और विटामिन डी धूप से
1: सनलाइट,
0: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
1: बहुत कमी है,
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना,
1: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है,
0: तो ठीक है ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए, समोसे उससे ट्रांसफैट के लिए मुश्किल है,
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना
1: चाहिए? फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है जी को, हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर,
1: हाँ, फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और PCOD जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ PCOD के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है PCOD के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14-16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता
1: गर्भाशय
0: है?
1: गर्भाशय के साइड में दो गर्भनली काय रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक

0: की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
0: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मेरे जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट एक्सरसाइज पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से सर्जिकल प्रोसेस है।
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो।
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हज़ार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए, किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजियोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को नहीं, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो गो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो प्रेग्नेंटली,
1: हाँ सिर्फ, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। फर्स्ट तो इंजेक्शंस, मेडिसिंस, और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रफ्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी?
1: और... हाँ नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो जाती है,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुखवस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
1: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका
0: जी।
1: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी
1: सिस्टिक होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
0: यूरिन के रास्ते यूरिन पानी आता है ऐसा?
1: हाँ, वो अलग चीज़ है। यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
0: जी।
1: हाँ,
0: तो उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
0: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी,
0: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी कर,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है,
1: होते हैं,
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में युववाणी में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव सप्ताह और वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या है फिन टॉक्सिसिटी और कैसे युवाओं को इससे बचना चाहिए, और साथ ही सुनेंगे आपके मनपसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म प्रिंस से, जिसमें स्वर दिए थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है सचिन गुप्ता का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात वन महोत्सव की करते हैं। दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव है। इसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वन महोत्सव का सीधा मतलब है पेड़ों का त्यौहार, जिसका मेन मोटिव लोगों को प्रकृति से जुड़ना और वनों की कटाई को रोककर ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाना है। बात करें इसकी शुरुआत की तो साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की वजह से ज़मीन का बंजर होना, समय पर बारिश नहीं होना, सूखा और खाने की कमी जैसी समस्याएं देश में होने लगी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए साल 1950 में भारत की तत्कालीन केंद्र खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और 1950 के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया और तभी से हर साल देश भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई को एक पूरा सप्ताह एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो इस सप्ताह बच्चे अपनी स्कूल कैंपस में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पर एक्ट, पोस्टर मेकिंग और एसी राइटिंग जैसे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। बात करें सरकारी विभागों की तो भारत सरकार और राज्य के वन विभाग द्वारा आम जनता को मुफ्त या फिर बहुत कम दामों पर पौधे बांटे जाते हैं। वन विभाग द्वारा बंजर जमीनों, पहाड़ी इलाकों और जंगलों में जाकर लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम और हैशटैग वन महोत्सव जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं। लोग रील्स, वीडियो और पोस्ट के जरिए अपने दोस्तों को भी पौधे लगाने के लिए अपील करते हैं। आइए बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहला है प्रदूषण को कम करना। वन महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, ताकि वे हवा से खतरनाक गैसों को कम किया जा सके और हमें सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन दे सके। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को रोकना। वन महोत्सव के जरिए नए जंगल तैयार किए जाते हैं, जो धरती को ठंडक देते हैं और मौसम के चक्र, जैसे समय पर बारिश होना जैसे फिनोमेना को ठीक रखते हैं। दोस्तों इसमें अगला लेकिन सबसे जरूरी है जंगली जानवरों के घर को बचाना। इस उत्सव का एक मुख्य लक्ष्य वनों का दायरा बढ़ाना भी है, ताकि वन्य जीवों को उनका प्राकृतिक घर और भोजन मिल सके और वो सुरक्षित रह सके। साथियों इस तरह हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: Bitch.
1: This place is heavy.

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल से, जिसमें स्वर थे नक्काश अजीज, जोनिता गांधी और मीट ब्रोज के। गीतकार हैं कुमार और संगीत भी है मीट ब्रोज का। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आइए पहले तो जानते हैं जूनोसिस होता क्या है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में होने वाले सभी संक्रामक रोगों में से लगभग 75% से ज़्यादा बीमारियां जानवरों से इंसानों के बीच में फैलती हैं, जैसे रेबीज, लाइम रोग, इबोला, सार्स। इसके अलावा ये गिनती WHO के अनुसार 200 से भी ज़्यादा है। ऐसे में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लुई पास्चर ने एक महान खोज की थी। दरअसल 6 जुलाई 1985 को लुई पास्चर ने रेबीज वायरस से संक्रमित एक बच्चे को पहला सफल टीका यानी कि वैक्सीन लगाकर उसकी जान बचाई थी, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसी ऐतिहासिक चिकित्सा सफलता की याद में और इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें इस दिन के उद्देश्य की तो सबसे पहला तो है बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आम जनता को जूनोटिक बीमारियों जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू इत्यादि के खतरे और उनके लक्षणों के बारे में एजुकेट करना। दूसरा है वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा मानकर सभी स्तरों पर मिलकर काम करने के महत्व को समझना और समझाना। तीसरा है बचाव और स्वच्छता सिखाना। जानवरों के संपर्क में आने के बाद सही तरीके से हाथ धोने और पालतू पशुओं को समय समय पर टीकाकरण के आदतों को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसी में अगला है महामारी को रोकना। शुरुआती स्तर पर ही जानवरों में फैलने वाले संक्रमणों की पहचान करना, ताकि उन्हें इंसानों में फैलने और बड़ी महामारी बनने से पहले ही रोका जा सके। साथियों वक्त है अब रोजगार सूचना का। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना गीत फिल्म दगाबाज 2 से, जिसमें स्वर थे राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल के। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीत है साजिद वाजिद का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं फिन टॉक्सिसिटी के बारे में। आखिर फिन टॉक्सिसिटी क्या है और इससे युवाओं को क्यों बचना चाहिए? एक्चुअली फिन या फिर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी उसे कहते हैं जब किसी इंसान या उसके परिवार को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या दिल की बीमारी जैसे रोग हो जाते हैं और उसकी इलाज की वजह से भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, यानी कि महंगी दवाओं, अस्पताल के खर्चे और बार बार डॉक्टर के पास जाने की वजह से पेशेंट की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। वो कर्ज के जाल में फंसने लग जाते हैं, जिसे फाइनेंशियल ट्रैप भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बीमारी के शारीरिक दर्द के साथ साथ मिलने वाला वो गहरा आर्थिक और मानसिक दर्द है जो पूरे परिवार के बजट और भविष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए युवा ये आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस लें। बीमारी के खर्चे से बचने के लिए खुद का एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इससे बहुत कम पैसों में आपका टोटल बीमा बढ़कर 20 लाख तक पहुंच जाता है। खासकर युवा वर्ग, आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आगे चल के वो उतना ही ज़्यादा मददगार होता है। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाए रखना। अचानक आने वाली मुसीबत या फिर बीमारी के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा अलग बचा कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाल कर अस्पताल या फिर दवाओं के खर्च में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इसमें अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर। कैंसर या फिर दिल की बीमारी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत लंबा और महंगा होता है। इसके लिए अपनी पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर ज़रूर लें। बीमारी का पता चलते ही बीमा कंपनी आपको एक बड़ा अमाउंट दे देती है, जिससे आप अस्पताल के साथ बाहर का खर्चा आराम से संभाल सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सही जानकारी होना सबके लिए बहुत जरूरी है। आप हो सके तो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही आप जन औषधि केंद्र से बेहद कम कीमत में दवाइयां ले सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य स्तरीय योजनाओं का भी आप फायदा ले सकते हैं। साथियों, सुनेंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रोजगार सूचना दे दूं। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जिसमें स्वर हैं अर्को के, गीतकार भी और संगीतकार भी हैं अर्को। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपने सुना गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर, गीतकार और संगीतकार हैं अर्कू प्रावो मुखर्जी। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में और साथ ही बात की फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं श्याम अनुरागी के बोल, आवाज़ श्वेता की, संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्याम अनुरागी के बोल, आवाज थी श्वेता की। अब आपको सुनवा रहे हैं आसमा और साथियों की आवाज। समीर के बोल, संगीत दिया है आशुतोष ने।

0: अभी आप सुन रहे थे आसमा और साथियों की आवाज़ में समीर के बोल। संगीत दिया था आशुतोष ने। और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की शब्द रचना। संगीत दिया है संदीप चौटा ने, आवाज सोनू कक्कर की।

अब आपको सुनवा रहे हैं संदेश महबूब के बोल, आवाज और संगीत लकी अली का।

अभी आप सुन रहे थे संदेश महबूब के बोल, आवाज़ और संगीत था लकी अली का। अब आपको सुनवा रहे हैं वी विजय की शब्द रचना, संगीतकार नीलू निरंजन, गायक कलाकार हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति।

0: आसमा के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की

0: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए शराबी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अंजान और प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत बप्पी लाहिरी का।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कटी पतंग, इस फिल्म का गाना। किशोर कुमार की आवाज़ है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गाना है ये। महेंद्र कपूर की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: तराने नए पुराने ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं काश फिल्म का गीत। गीतकार फारूक केसर, संगीतकार राजेश रोशन, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे।

0: अभी आप सुन रहे थे काश फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे। और अब वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं केशव सुल्लेरे की आवाज़ में ये लोकगीत।

लोकरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अरविंद सोनी की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अरविंद सोनी की आवाज़ में ये लोकगीत, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: अरे काय भैया, ये सब मुंह लटकाए काय घूम रहे थे?
2: अब का बताएं भज्जा तुमकी, कोनो ये कहु परेशानी हो तो बतावे, ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तो मैं का बताएं भैया, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहू ये खोजा परेशानी, कहू वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा
1: हाँ। हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20 और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: एक बीर फिर से बता दे भज्जा।
1: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं, 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
1: अरे
2: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
1: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें, लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक रंग कार्यक्रम। अब आपको सुनवा रहे हैं मान सिंह रैकवार की आवाज में ये लोकगीत।

0: इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के

0: कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद शाम 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:20 से। शाम 7:30 से सुनिएगा ग्राम सभा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 से। संगीत सरिता का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:20 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे रात्रि 8:45 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर होंगे रात्रि 9:00 से। रात्रि 9:30 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, कल की हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 से। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनिएगा 6:05 से। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ सुनिएगा 6:30 से। भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा 6:40 से। संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:55 पर। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा 7:00 से। कृषि संकेत सुनिएगा 7:05 से। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:10 से। मनचाहे गीत का आनंद लीजिएगा 7:20 से। संगीत सरिता का प्रसारण समय 7:45 से। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे 8:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 8:15 से। 8:30 से सुनना ना भूलिएगा पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर, विषय उर्दू अदब और शायरी, गेस्ट शायर आदर्श दुबे, भेंटकर्ता दीपक निषाद। 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 10:00 से सुनिएगा जिले की चिट्ठी, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागनी का प्रसारण होगा 10:05 से। आपकी पसंद ये कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 से। 11:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा। श्रोताओं, 5:02 से सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता का प्रसारण समय 5:30 से। 6:30 से सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत। 6:45 से लोकरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:30 से कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 से। संगीत सरिता का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:20 से। समाचार

संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर। मन चाहे गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: दीप तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
2: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे थे। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। अब रुख करते हैं मानसून का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रुपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: जी का।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्मिला पांडे और सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से। कुछ ही पलों में ग्राम सभा का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: भारी बारिश को अलर्ट जारी करा गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पन्ना में भारी बारिश हो सका थे। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में हुई कहूँ तेज तो कहूँ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कल प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में तेज बारिश भई थी। शाजापुर में सबसे ज़्यादा 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई। ये के बाद कालीसिंध नदी उफान पे है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। और एक के संगे बुंदेली समाचार समाप्त हुए।
2: बुंदेली समाचार।
1: भैया बहनों, अपन और हैं अपनी पसंद के लोग ही सुन रहे हैं और जो हमारे हाथ में चिट्ठी आ गई है, यह लिखी है ग्राम मूर्तक का माफी ओंकारेश्वर जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल ने। जो एक चिट्ठी और है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनीजा मोटवानी, राजेश, मुकेश, सोमेश, मनीषा और शुभम की। इन सबकी पसंद पे अब अपन सुनाते हैं जो एक लोकगीत जेखों गा रही हैं बिमला श्रीवास्तव।

भैया बनेहरो, अपन और हैं जानत हैं कि आजकल अपन साहब सुन भी रहे हैं बहुत कि मिलेट को बड़ो प्रचार हो रहा है। मिलेट्स हैं भाई, अपने कहते हैं श्री अन्न, तो जाको बड़ो प्रचार चल रहा है। तो कई बेरा कई जने पूछा थे कि भाई मिलेट्स का है, जो ऐसे अनाज होते हैं जो सूखे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जो कि जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़त है। कई प्रकार के होते हैं, जहाँ बाजरा भाव, रागी भाई, ज्वार, कोदो, कुटकी, सवा, कंगनी, ये कहानी मिलेट की फसलें। तो इन्हें आजकल इनको खूब प्रचलन बढ़त जा रहा है, कहा से जब पाया गया है कि स्वास्थ्य के लाने ये ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो आजकल इनकी मांग सी बाजार में बढ़त जा रही है, तो इनकी खेती सुई करवे की बहुत रुझान अपने किसान भैयाहरों में बढ़त जा रहा है। तो मिलेट की खेती के लाने कम पानी की जरूरत पड़ा थे, इससे सूखे क्षेत्रों के लाने बड़ी उपयुक्त फसल है। दूसरा फायदा जो होते हैं कि मिलेट की फसल बड़ी जल्दी पक जाते हैं, इससे जब किसानों के लाने बड़ा लाभदायक फसल है। और तीसरी चीज़ यह है कि मिलेट की जो फसल होते हैं वह स्वास्थ्य के लाने बड़ी लाभदायक होते हैं। ऐसी सब जो आधुनिक तरीका से जो खोजें भाई हैं, उनमें जो चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब चीज़ों को हम देखा भाई, अब मिलेट्स की खेती की तरफ रुझान किसान भैयाहरों को बढ़त जा रहा है। अपन और जाके बारे में और बात करें, जब हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई अपने एक पुराने श्रोता हैं, कठघोरा से भाई चंद्रपाल से हैं, श्रीमती शकुंतला, मनोज पाल से हैं, लखन पाल से हैं, दिनेश पाल से हैं और कुमारी कविता सिंह की। और जय चिट्ठी है बेमेतरा नया पारा से भाई ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना, नीलेश, श्रद्धा, गौरव और निधि साहू की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन सुनाते हैं मल्लूलाल सेन को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो भैया रो अपन और बात कर रहे थे मिलेट्स की यानी श्री अन्न की बात कर रहे थे। बाकी खेती के फायदों के बारे में अपन यदि बात करें तो पहला फायदा तो जो ही है कि कम पानी और कम लागत में उगाई जा सका थे। दूसरों है कि दूसरे जो अनाज होते हैं उनकी तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं। और ऐसे एक बड़ा काम जो हो जाता है कि खेत में नाइट्रोजन को फिक्सेशन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ जाती है। ऐसे वह अगली पैदावार के लाने बड़ी लाभदायक होते हैं। और इतनी कम पानी में और जल्दी पकवे वाली फसल हुए कारण साल में 3 फसलें तक मिलेट्स की निकाली जा सका थी। 45 से 80 दिन के अंदर कटाई करी जा सका थे। बंजर भूमि को उपजाऊ भी बनाया जा सका थे। खाद्य सुरक्षा में सुधार हुए थे कि और जैसे किसानों की आय में वृद्धि हुए थे और पर्यावरण को संरक्षित करो जा सका थे। और मिलेट जो है या के लाने बार बार कही जाते हैं, बहुत पौष्टिक अनाज होते हैं जो स्वास्थ्य के लाने बड़ा लाभदायक होते हैं। और सूखा सहिष्णु है, जिसका मतलब ये है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सका थे। और सूखाग्रस्त इलाकों के लाने तो मिलेट की खेती एक वरदान है, जब किसानों की आय बढ़ावे और जल संरक्षण में भी मदद करत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब ऐसे अपन चर्चा कर रहे हैं इनकी, कि यदि मान लो अपने भैया हैं जो जिनके पास में पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है या पानी की कम व्यवस्था हो पाते है, तो बेओ ने यदि चाहें तो सोचें कि मिलेट्स की खेती करवे की बारे में कुछ योजना बनाएं, बाकी बारे में कुछ बात करें, तो बेओ ने ऐसा करके अच्छे तरीके से कमाई कर सकते हैं। भैया बहनो, अब जाइए, हमारे यहाँ से चिट्ठी आ गई अपने नियमित श्रोता हैं, योगेश्वर सिंह भारतीय, योगेंद्र सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती की, और आवास कॉलोनी बायां तहसील रहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारती, कोशाबाई भारती, कुमारी लक्ष्मी, महेंद्र सिंह, सचिन और तरु, इन सब की पसंद पे अब अपन सुनाते हैं डॉक्टर नीता खरे को गाओ जो लोकगीत।

तो भैया बहनों, अपन उन्होंने बात कर रहे थे मिलेट्स के बारे में, और मिलेट्स की खेती से चूंकि बहुत फ़ायदा हुआ थे, तो अब यदि मान लो अपन योजना बना रहे हैं कि मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, श्री अन्न की खेती कर रहे हैं, तो बाकी लाने पहले तो अपन उन्होंने को जानने की ज़रूरत है कि मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें हैं। तो मिलेट्स में हमने आपको जैसे बताई कि बाजरा भाव, रागी भाई, ज्वार, कोदो, कुटकी, सवा, कंगनी, ये फसलें जहाँ शामिल हुए थे। तो इनकी आकार और रंग के आधार पर से इन फसलों है कई बार अलग अलग करो जा सका थे। जैसे मोटे मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कंगनी और चेना, और सूक्ष्म जो मिलेट हैं मतलब बारीक जो होते हैं ये हैं रागी, कोदों और कुटकी। तो जो सूक्ष्म यानी बारीक वाले जो श्री अन्न हैं ये छोटे आकार के होते हैं, और इनको आकार गहरों भूरों या काले रंग को होते हैं, और मोटे मिलेट जो हैं ये हल्के भूरे या पीले रंग के होते हैं, तो थोड़े से बड़े आकार के होते हैं और मोटे मिलेट्स। तो ये जानने के बाद में अपन औरों को जवाब की सही जानकारी होनी चाहिए कि जाके खेती अपन कैसे करें। तो जाकर आने पहली चीज़ तो यही है कि भूमि की तैयारी कैसे करें। मिलेट्स की खेती के लाने मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करवो जरूरी है। मिट्टी को समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए। जाकर लाने खेत की 2-3 बार जुताई करें, फिर पाटा लगा दें। बीज की बुआई में मिलेट्स के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआएं, और बुआई को समय फसल के प्रकार पर निर्भर करा थे, और आमतौर पर मिलेट्स की बुआई जून जुलाई के महीना में करी जाते। मतलब कहवे को जो भाव कि अभी जो समय चल रहा है, जो समय मिलेट्स की बुआई के लाने अच्छो समय है। भैया यार, अपन जाके बारे में कछु और बातें कर रहे हैं मनो। अब हमारे हाथ में जो एक चिट्ठी आ गई है, जो चिट्ठी लिखी है अपने नियमित श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, यमुना ठाकुर, प्रेम साहू, मिथिलेश, सूरज और ज्योति ठाकुर ने। और एक और चिट्ठी है दतरंगी से भागवत वर्मा, भाटापारा से हरमिंदर सिंह चावला और रिंगनी से दिनेश वर्मा की। इन सबकी पसंद पे अब अपन सुनाते हैं उमा सक्सेना को गाओ भाव जो लोकगीत।

तो भैया रो अपन हो रहे हैं अपनी पसंद के लोकगीत से सुना जा रहे हैं और कछु काम की जानकारियों से सुना जा रहे हैं। अपन हो रहे खेती किसानी को काम कराते हैं और खेती किसानी को काम को यदि अपन सही तरीका से वैज्ञानिक तरीका से वैज्ञानिक सोच के साथ यदि अपन करें तो वहाँ में अपन अच्छो लाभ कमा सकते हैं। अब जैसे अपन बुआई कराते हैं तो बुआई करवे के लाने अपन जमा लेते हैं कई बेरा के अपना बीजा लाओ और लेकर अपने खेत में अपने डाल दो सो अपने हो गई। मानो यदि अपन वही बीज को सही तरीका से उपचारित करके और फिर बाद में यदि बुआई करें तो अपने कई तरीका को लाभ हो सका थे। ये लाभ किस प्रकार को हो सका थे कि सबसे पहले तो जो है कि बीजों यदि अपन उपचारित कर लाएं तो बीजों में फफूंद नहीं लग सके, फिर अपन को कीटनाशक को काम से हिलाते हुए और साथ साथ में जैविक पदार्थों से उन्हें यदि उपचारित करो जाते तो बासे वे एक जीवन रक्षक दवा को काम कराते हैं जिनमें बीज जनित जो रोग होते हैं और कीट होते हैं उनसे बचाव होते हैं और फसल की उपज में कम से कम 15 से 20% तक को शुद्ध लाभ कमाया जा सका थे। तो जाके लाभ की बात

यदि अपन कर रहे हैं बीजोपचार की, तो जब बीजों और मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक फफूंद हुए थे, बैक्टीरिया हुए थे और वायरस हुए थे, उन्हें नष्ट कर दिए थे, जैसे पौधों को सड़न और अन्य शुरुआती बीमारियों से सुरक्षा मिला थे। बुआई के बाद बीजों को दीमक और अन्य भूमिगत कीटों से बचावे के लाने जब बड़ी कारगर हुए थे, जाके उपयोग से बीजों की अंकुरण क्षमता से भी बढ़ जाते थे और प्रतिकूल मौसम में भी स्वस्थ और मजबूत पौधा निकला थे। एक संगे संगे जो उपचारित बीजों के जो पौधा होते हैं उनकी जड़ें बड़ी गहरी और मजबूत होते हैं, जैसे वे मिट्टी में पोषक तत्व और नमी से आसानी से अवशोषित कर लिए थे। और शुरुआती अवस्था में रोगों की रोकथाम हो जाए के बाद में कीटनाशकों और रसायनों के व्यवहार जो खर्चा है वो बच जाते हैं। तो कहवे को मतलब जो हो कि अपन ने शुरू में थोड़ा सा खर्चा कर लो तो बाद में अपन ने अपने बड़े खर्चा बचा लाए, तो जा एक जरूरी चीज हुए थे। अब थोड़ी सी बात कर लें कि बीजोपचार की विधि का हुआ था, तो जैविक विधि हुए थे जाके और दूसरी रासायनिक विधि हुए थे। जैविक विधि में का हुआ था कि बीजों को ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम जैसे जो जैविक एजेंट हुए थे उनसे उपचारित कर जाते थे, और जैविक खेती के लाने बहुत उत्तम है। और रासायनिक विधि के लाने जहाँ में बीजों को अनुशंसित मात्रा में फफूंदनाशक दवाइयाँ जैसे कार्बन डाइजम या थायरम और इनसे इन बीजों से उपचारित करो जाते हैं और बाकी बाद में इनकी बुआई करी जाते हैं। तो ये बहने ये अपन बुआई करते समय बीजोपचार पे अच्छो ध्यान दें तो अपन अच्छो लाभ कमा सकते हैं। अब जय चिट्ठी अपने नियमित श्रोता हैं बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और समस्त माखीजा परिवार की। और जय चिट्ठी है जबलपुर से, ग्राम बेलखेड़ा जबलपुर से, गणेश विश्वकर्मा, गुड्डू मिस्त्री, इंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सुलेखा, रेखा, संगीता, मूना, सरोज, रिया, अनिल, अमित, प्राची, कार्तिक की। गंगानगर जबलपुर से अंजलि, दीक्षा, राम कुमार, प्रकाश और राम गोपाल की। और सुगातला नरसिंहपुर से ज्ञानेश, गुड्डू, वर्षा, सुषमा, अशोक, उमेश, राजकुमार और बहुत सारे मित्रों की। तो जो बहुत सारी लोगों ने पसंद करो है जब लोकगीत के लाने, तो जो भजन अपन सुनाते हैं जेखों गा रहे हैं गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल।

और भैया बहनों देखो, अब बिहारी की बिरिया सुई हो रही है, सो अब लेते हैं आप और से विदा। तो ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे बारे सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की दो यहाँ जोर खें राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो।

0: अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो। और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म का गीत बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का। गायक कलाकार है आशा भोसले और कुमार शानू।

अभी आप सुन रहे थे बलमा फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे आशा भोसले और कुमार शानू। कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति में सुनवा रहे हैं हम भी इंसान हैं फिल्म से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार बप्पी लहरी, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं चंदन दास की आवाज़ से, कलाम है निदा फाजली का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं नासिर काजमी का कलाम, आवाज़ गुलाम अली की, संगीत दिया है रफीक हुसैन और गुलाम अली ने।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं कैसर उल जाफरी का कलाम, आवाज़ और संगीत अनूप जलोटा की।

0: तलत अजीज़ की गाई इस गज़ल के साथ ही संगीत सरिता का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 MHz पर। कुछ ही पलों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे

0: स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और

0: नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं और अब वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी

नगमों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कहते हैं कभी कभी जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब दिल खुश होता है तो हर तारा अपना सा लगता है, हर हवा कोई मधुर संदेश लेकर आती है और पूरा आसमान जैसे मुस्कुराने लगता है। ऐसे ही खूबसूरत जज्बातों को सुरों में प्रोता ये आपकी पसंद का गीत हमने चुना है पिघलता आसमान फिल्म से। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, आवाज़ लता मंगेशकर की, पसंद आप सभी की। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर, रोशनी मनवर और प्रियांशी। गांव खारियां ठाड़ी ज़िला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल बिजारनिया, अभिषेक योगेश पूजा आरजू और नव्य बिजारनिया। ग्राम ममना ज़िला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पिघलता आसमान फिल्म से आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अब आपको सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। पसंद आप सभी की गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे एवं समस्त लोखंडे परिवार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवांशहर पंजाब से सुरेंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रीतेश, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आइए सुनते आपकी पसंद पर ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म से, गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। आपकी पसंद के नगमों को लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों बाद।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं गिरफ्तार फिल्म से इंदीबर के वो बोल। संगीत दिया है बप्पी लहरी ने, गायक कलाकार हैं बप्पी लहरी और शब्बीर कुमार। पसंद आप सभी की नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, रामदास, रमाकांत दुबे, रमेश कठोंदिया, सुजीत, प्रमोद सैनी और विवेक सैनी। गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत और कमल साहनी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। असम से हितेंद्र दास। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे गिरफ्तार फिल्म से, गायक कलाकार थे बप्पी लहरी और शब्बीर कुमार। अब आपको सुनवा रहे हैं हसीना मान जाए की फिल्म से। गीतकार हैं अख्तर रुमानी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। पसंद आप सभी की दादा बाबू रोड ग्रीडे झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइया, नवाज़, हसन नवाज, बाबू अहद,

और बेबी चाहत, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं डॉन फिल्म से अनजान के बोल। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। पसंद आप सभी की सदर बाजार कुरावली।

से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल विनीत और सोनम वर्मा। गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से। जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी डॉन, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी व्हाट्सएप फरमाइश और पत्र भेजने का। आप अपनी पसंद के नगमों की फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, कार्यक्रम मन चाहे गीत, आकाशवाणी सागर, मध्य प्रदेश। पिन कोड है 470001। और हमें व्हाट्सएप पर फरमाइश भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9770432297। व्हाट्सएप नंबर पुनः सुन लीजिएगा 9770432297। इसी के साथ मन चाहे गीत कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तू गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर अशीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से

बोल रहा है उठ पटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई, मनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस ज़माने में भी ज़्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफ़ी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज़्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस ज़माने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज़ ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर

0: अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. in his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi